मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की 2 दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GNKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश

0: के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जब हम माता रानी के द्वार पर अपना शीश झुकाते हैं, जब हमें उनकी कृपा वहाँ लेकर जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे चारों ओर से अमृत ही अमृत बरस रहा है। ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जो पहले कभी नहीं हुई होती।

धर्म की कसौटी है कि मनुष्य का चित्त परहित की ओर हो, उसका चित्त परहित में लगा रहे। इसके लिए भगवान के नाम जप में मन लगाना होगा, तभी मन के भेद मिटेंगे और चित्त स्वार्थी न होकर परमार्थी

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

जब तक हमारे विचार बुराई पर केंद्रित होंगे तो हमें केवल बुराई ही दिखेगी और स्वार्थ में भी उसका प्रवेश हो जाएगा। परंतु यदि यही विचार भगवान की लीलाओं पर, उनके रूप सौंदर्य पर लगेगा तो चारों ओर सौंदर्य फैल जाएगा।

0: इसी के साथ आज की आराधना अब संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लाला लाजपत राय के विचार।
1: भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के तीन प्रमुख प्रवक्ता थे लाल, बाल और पाल। लाल से बोधन था लाला लाजपत राय के लिए, जिन्होंने जलियांवाला बाग के नृशंस बर्बरता को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ताबूत में अंतिम कील कहा था। बाल थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार की घोषणा की थी। और पाल के रूप में याद किए जाते थे विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने स्वराज्य चरित्र के उद्घाटन के लिए देश को ललकारा था। राष्ट्रीय जागृति के साथ साथ जीवन की समस्याओं के विश्लेषक और वैश्विक संकल्पनाओं के उद्गाता के रूप में लाला लाजपत राय के विचार आज भी हमारे लिए दिव्य आलोक प्रदान करते हैं। मृत्यु, धर्म, युद्ध, श्रम, शिक्षा, क्रांति, शांति आदि सभी मसलों पर उनकी दृष्टि थी। उनकी दृष्टि में धर्म चिंतन मात्र नहीं है, अपितु चिंतन और आचरण है। इसी परिप्रेक्ष्य में लाला लाजपत राय ने कहा था, किसी भी धर्म मत को आदर्श और निर्दोष बनने के लिए मानव स्वभाव के उन सभी पक्षों के सामंजस्यपूर्ण विकास की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए जो उसके भौतिक जीवन के आधार का निर्माण करते हैं। सामाजिक पक्ष की उपेक्षा तो वो कर नहीं सकता। वास्तव में मनुष्य को समग्रता में समझने का उनका प्रयास

0: धर्म को मानव के स्वभाव, उसकी भौतिक आवश्यकता को समझने और उसके परिष्करण का कार्य करना पड़ता है। जो धर्म जीवन की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करके चलता है, उसके आचरण की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। जीवन और मृत्यु की पहेली मानव को भटकाती रही है। मृत्यु की भयावहता मानव को आशंकित और उद्वेलित करती रहती है। मानव जीवन की नियति और परिणति का शाश्वत प्रश्न सही जीवन दृष्टि की मांग करता है। लाला लाजपत राय ने इस संबंध में कहा था, गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए मनुष्य को पहले गरिमापूर्ण ढंग से जीना सीखना चाहिए। वही मृत्यु भव्य है जो भली प्रकार जिए गए जीवन अर्थात सिद्धांतों के लिए, मातृभूमि के लिए और मानवता के लिए जिए गए जीवन के प्रासाद का शिखर बनती है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक अर्थ है परहित में रत होना, पर पीड़ा से बचना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि से अपने को बचाना, देश समाज और मानवता के हित चिंतन का अनुदिन स्मरण और तदनुरूप आचरण। ऐसे आचरण वाला व्यक्ति उस गरिमापूर्ण मृत्यु का वर्णन कर सकता है जिसकी वो आकांक्षा करता है। लाला जी ने कहा था, मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है न कि दूसरों की कृपा से। उनका संदेश है कि मुसीबतों को हौसले से झेलो, इनसे घबराना अपने काम को बिगाड़ना है। संकट में ही मनुष्य की परीक्षा होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे लाला लाजपत राय के विचार। इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने, कृषि जगत।

0: आज इस कार्यक्रम में किसान भाइयों को हम सुनवा रहे हैं बागवानी फसलों की व्यावसायिक खेती विषय पर कोमल सिंह यादव से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत।
1: किसान भाई खेती किसानी के साथे साथे आज देखा कृषि विविधीकरण की ओर भाई जोर दिया जाता है कि भाई चार पैसा के आमदनी हो, ऐसे उपाय कृषि में हो चाहिए। तो भाई कृषि विविधीकरण का अगर बात आवत है तो हमें बागवानी एक महत्वपूर्ण एकर क्षेत्र बाटे। तो बागवानी जो फसल बाटे ओकर व्यावसायिक खेती कैसे किन जाए, आज एक बिना जानकारी दे के खातिर हमारे बीच में कोमल सिंह यादव जी हैं। आप कुलभास्कर आसम पीजी कॉलेज में भी कार्यरत हैं और यह विषय के जानकार हैं। श्री कोमल सिंह यादव जी, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे।
2: धन्यवाद।
1: हम अपने किसान भाइन के लिए जानब कि जो बागवानी खास करके जो जो होता है व्यावसायिक खेती कैसे की जाए, एक के बारे में विस्तार से बताएं।
2: जी देखें, किसान भाई बागवानी फसलों की व्यावसायिक खेती से तात्पर्य फल है, सब्जियां हैं, फूल हैं, मसाले हैं या औषधीय खेती हैं, जिनका लाभ कमाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। इसमें क्या है, उत्तम जो उन्नत किस्मों का चयन करें, सिंचाई का प्रबंध करें, संतुलित खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें, कीटनाशक नियंत्रण करें एवं आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग करें, अच्छी पैकेजिंग। देखिए, इसमें किसान भाई इस बात का अवश्य ध्यान दें कि बागवानी फसलों में केवल फसल का उत्पादन करना ही नहीं महत्व है, उसके साथ उसकी पैकेजिंग करें, उसका भंडारण करें, समय से मार्केट में पहुंचाएं, ये चीजें किसान भाई विशेष तौर से ध्यान देकर।
1: का मतलब ये कि एकर एक जो व्यावसायिक रूप से उत्पादन के साथे साथे जौन है ओका केह धरे से बाजार में प्रस्तुत करे बाटे, एकर भी विशेष ध्यान दे के आवश्यकता बाटे। तो एक देखें, किसानन के लिए भी हमेशा प्रयास किए जाता है कि उनका आय दुगनी कैसे हो, तो बागवानी के जरिए वो अपन आय किस तरह से वृद्धि कर सका थी, ए पर प्रकाश डालें।
2: देखें किसान भाई, इस बात को आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर एक बात तो निकल कर आती है कि किसानों की आय दोगुनी हम कैसे करें, या किसानों की आय, एक सरकार हमारी भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन था कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। तो किसानों की आय दोगुनी

0: ठीक है, से उसको अगर किसान भाई थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान दे लें तो बहुत आसानी से उनकी जो है आय दुगनी हो सकती है। सबसे पहला काम, वो जो खाद एवं उर्वरक है, उर्वरक पर ध्यान दें। हम प्रायः किसान जब क्षेत्र में जाते हैं देखते हैं तो किसानों की सबसे बड़ी चीज़ें क्या हैं, अपने मिट्टी की जाँच नहीं करवाएंगे और अंधाधुंध उर्वरक का प्रयोग करेंगे। जहाँ उनको चाहिए आवश्यकता है 10 किलो, वहाँ पे वो 20 किलो 25 किलो डाल रहे हैं। इससे उनकी जो लागत है वो बढ़ रही है। हर किसान के पास अमूमन क्या होता है कि पशु होते हैं दो चार, कुछ नहीं करना है किसान को, अपने यहाँ एक बर्मी कंपोस्ट अगर वो बना ले, बर्मी कंपोस्ट बना ले, कुछ नहीं, केवल जो है एक 7 फीट का लंबा गड्ढा बना ले, 3 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा बना ले, और गोबर को उसमें डाल करके उसको पानी के छिड़काव करके उसको ठंडा कर दे और फिर केचुआ डाल दे। उसके बाद वो लगभग 70 से 80 दिन में बर्मी कंपोस्ट आपकी तैयार हो जाती है। उर्वरक की जगह पे आप उस बर्मी कंपोस्ट को प्रयोग करिए। उससे क्या होगा, बर्मी कंपोस्ट से सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि एक तो फल की क्वालिटी अच्छी आएगी और उसमें कीड़े और मकोड़े, चूंकि जो बर्मी कंपोस्ट होता है वो जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करता है, तो उससे क्या होता है कि कीड़े और मकोड़े भी कम लगते हैं, किसान की लागत कम आती है। तो इससे एक फायदा हुआ, उसके किसान की आय बढ़ गई। दूसरा, बागवानी अगर किसान ने किया है तो उसके बगल बगल आप पपीता की खेती कर लीजिए, वो आपकी एडिशनल अतिरिक्त इनकम हो आय हो जाएगी। या उसके बगल बगल आप गेंदा की खेती कर लीजिए। गेंदा की खेती करने से आपका फायदा क्या है, किसान भाई इसको समझें कि गेंदा गेंदा जो होता है हमारा ट्रैप का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हो जिसको फंसा लेता है और हमारे पौधे उससे बच जाते हैं। तो इससे किसान भाई जो है लागत को कम करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और दोगुना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। देखिए, जब बागवानी की बात आवत है तो भाई देखा है, और भी जब कृषि क्षेत्र का हम बात करी थी, चाहे अनाज उत्पादन का हो तो मत, तो भाई एक अच्छा खासा क्षेत्रफल खेती के लिए होता है, लेकिन बागवानी के लिए उतना क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं है, बहुत
0: जी
1: कम
0: जी
1: भूमि की
0: जी
1: आवश्यकता
0: बिल्कुल
1: पड़ती है। तो
0: बिल्कुल
1: एके बिना जिसे भूमि कम है तो वह किस ढंग से अधिक लाभ ले सकते हैं, कौन तरह से ऐसा पौधा है बागवानी में जिसका लगा के अपने किसान भाई लाभ से सकते हैं।
0: देखिए, हमारे आसपास जो खासतौर से जो देखा जाए तो जो हमारा रीजन है, जो हमारा क्षेत्र है, इसमें जैसे प्रतापगढ़ का आप क्षेत्र ले लेंगे तो वहाँ पे आंवले का अच्छा खासा जो है खेती होती है। दूसरा आप इलाहाबाद का रीजन, यहाँ पे अमरूद की खेती अच्छी होती है। तो आंवला और अमरूद, अगर उसी के साथ हम पपाया की खेती ले लें, पपीते की खेती ले लें, तो उससे जो है किसानों को लाभ मिल जाएगा। किसान भाई यहाँ पे ध्यान दें, गलती कहाँ करता है किसान, किसान जो है जैसे एक अंतरण होता है, अंतरण का ध्यान नहीं देता है। तो अंतरण का ध्यान जरूर दें, जो एक वैज्ञानिक हमने फिक्स कर रखा है कि आम 10 × 10 मीटर पे लगता है, या पपीता है 2.5 × 2.5 मीटर पे लगाते हैं, तो इस चीज़ का वो अवश्य ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू वैरायटी, जो अंतरण है वो वैरायटी पे भी वेरी करती है। आप पूसा नन्हा ले आएंगे तो उसका अंतरण दूसरा होगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है, तो उसका ध्यान रख करके स्पेसिंग का जरूर ध्यान दें। उससे क्या होता है कि उनको जो है किसानों को एक तो कीड़े मकोड़े कम लगते हैं, सिंचाई की सुविधा होती है, और उसकी जुताई भी अच्छे से कर सकते हैं, निकाई गुड़ाई करने में भी आसानी होती है। इस बात का किसान भाई अवश्य ध्यान रखें।
1: बिल्कुल। ये बागवानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो भाई सिर्फ फल उत्पादन के साथ साथ तरह तरह के भी अवसर देते हैं, खास कर के इसमें एक रोजगार का भी एक अलग क्षेत्र विकसित होते जाना है। तो
0: जी,
1: इसमें किस तरह से रोजगार मिल सकता है, खास करके जो व्यावसायिक रूप से जो बागवानी खेती की गई हो।
0: देखिए, व्यावसायिक खेती में अगर आप रोजगार के अवसर ढूंढेंगे तो बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं। हम सबसे पहले तो यही करें कि जब हम अपना खेत जो बागवानी लगाते हैं, तो बागवानी में जैसे आम का लगाएंगे तो 10 × 10 मीटर पे जो अंतरण होता है उसमें इतना जगह होता है कि उसमें आप सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जब आपने सब्जी की खेती किया तो उससे क्या हुआ, एक हमें लेबर की ज़रूरत होगी, तो स्थानीय स्तर पे वहाँ पे लेबर का समायोजन हो गया, पहली बात। फिर जब हमारी फसल तैयार हो गई, मान लीजिए हमारी बाग तैयार हो गई, बाग तैयार होने के बाद हम फल की तुड़ाई करेंगे, फल की तुड़ाई करके उसको ले जाएंगे मार्केट में, तो जो फल की तुड़ाई करने और मार्केट में ले जाने में है उसमें भी रोजगार के अवसर सृजन होंगे। इसके साथ साथ आजकल हम देख रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी के जो क्या फ्रूट्स होते हैं उनको विदेशों में भी निर्यात किया जाता है।
1: बिल्कुल
0: जब हम
1: बिल्कुल
0: विदेशों में उसका निर्यात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, तो इसके माध्यम से जो है कई सारे रोजगार के अवसर और चीज़ें हैं। रोजगार के
1: बताना
0: अवसर
1: जी।
0: सृजन करने से एक तरी और चीज़ें हैं कि आप उसके बाय प्रोडक्ट बनाएं। जैसे आपका जो है आंवला है, आंवले से आपने अचार बनाया, ठीक है,
1: बिल्कुल
0: अचार की पैकेजिंग हुई, उसको आपने जो है ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में भेजा, फिर आप आंवले से

0: मुरब्बा बनाया, मुरब्बे से भी आप जो है वही प्रक्रिया अपनाएंगे और मार्केट में भेजेंगे, मार्केट में उससे जो है हमें धनार्जन होगा। ऐसे आम है तो हर चीज़ के जो है बाय प्रोडक्ट बनते हैं, उसके माध्यम से जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध
1: अच्छा,
0: होंगे।
1: बागवानी से जो पोषण सुरक्षा खास करके बात, एक का तात्पर्य बाटे कैसे का सुनिश्चित करते हैं पोषण सुरक्षा?
0: देखिए, बागवानी से पोषण सुरक्षा खास तौर से देखा जाए, जो आप अगर उस बाग के बारे में पूछ रहे हैं, तो पोषण के बारे में तो यह है कि हम सबसे पहले उसको संतुलित उर्वरक दें, एक जो चाहे प्रति पौधा हो या प्रति एकड़ हो, तो उसको हम संतुलित दें। जब हम कभी भी बागवानी में बागवानी लगाने के बारे में सोचें या बागवानी लगाएं, तो उसमें किसान भाई इस बात का अवश्य ध्यान दें कि हम जो है गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद का अवश्य प्रयोग करें, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बर्मी कंपोस्ट है, तो बर्मी कंपोस्ट का जो है अवश्य प्रयोग करें।
1: खास करके देखा फल उत्पादन, भाई चाहे अमरूद हो, आंवला हो, ऐसे जो जुड़ा उत्पाद बनाता है, तो
0: जी,
1: यह का विदेशी जो मुद्रा अर्जित करे के बार संभावना, एक कितना एक दायरा बढ़ सका था, किसान के कितना इसे लाभ हो
0: देखिए,
1: सका?
0: इसका दायरा तो असीमित है विदेशी मुद्रा का, क्योंकि देखा जाए इस समय जो है हमारा खास तौर से उत्तर प्रदेश, मुझे जो एक्चुअल डाटा याद आ रहा है, शायद सब्जी की प्रोडक्शन में नंबर एक हो गया है। तो जब हमारे यहाँ या और फ्रूट का भी ठीक ठाक जो है प्रोडक्शन हमारे यहाँ उत्पादन होता है, तो जब हम इन सब चीज़ों को बिक्री करेंगे विदेशों में, तो अच्छी मात्रा में जो है विदेशी मुद्रा का अर्जन हो सकता है। उससे हमारे देश का तो साख बढ़े ही बढ़ेगा, साथ में हमारे किसानों की जो माली हालत है उसमें भी सुधार होगा।
1: बिल्कुल, हम कहे किसान भाई देखा बागवानी फसलों जो व्यावसायिक खेती बाटे, उसे कई के कई तरह से लाभ अर्जित किया जा सकता है। यह विषय में आप इतनी बढ़िया जानकारी दें, आप जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बागवानी फसलों की व्यावसायिक खेती विषय पर अभी आप कोमल सिंह यादव से की गई प्रवीण कुमार मिश्र की ये बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर यशवंत कुमार की वार्ता। विषय है पक्षाघात में फिजियोथेरेपी द्वारा उपचार।
1: आज की इस बदलती जीवन शैली में पक्षाघात की समस्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। शरीर के किसी विशेष अंग या पूरे शरीर को यदि हम किसी सेंसेशन के उपरांत प्रतिक्रिया नहीं कर पाते या महसूस नहीं कर पाते तो इसी को ही पैरालिसिस या आम बोलचाल की भाषा में पक्षाघात कहते हैं। दिमाग को ठीक तरह से खून न मिलना, हाई ब्लड प्रेशर के कारण दिमाग की रक्त नलिका का फट जाना, स्पाइनल कार्ड या तंत्रिका तंत्र में किसी चोट का लगना या बीमारी का होना आदि इसके होने के मुख्य कारण हैं। जब हम पैरालिसिस का फिजियोथेरेपी द्वारा उपचार की बात करते हैं तो हमें शरीर के सामान्य कार्यविधि को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। शरीर के विभिन्न भागों से दिमाग तक सूचना पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में तीन प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें प्रोप्रियोसेप्टर्स, एक्सियोसेप्टर्स एवं इंट्रोसेप्टर्स कहते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर्स हमारे शरीर के जोड़ों एवं मांसपेशियों में उपस्थित रहते हैं और हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। एक्सियोसेप्टर्स हमारे शरीर के बाहरी एवं इंट्रोसेप्टर्स आंतरिक वातावरण से सेंसेशन ग्रहण करके दिमाग तक जाते हैं। इसके पश्चात हमारा दिमाग विश्लेषण करता है कि शरीर के किस अंग से कार्य कराना है, उसे मोटर नर्व्स के द्वारा आदेशित करता है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां कार्य संपन्न करती हैं। शरीर की कार्यविधि ठीक तरीके से चलाने एवं सुरक्षा के लिए हमारे शरीर में रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे यदि हमारी उंगली किसी नुकीली वस्तु पर पड़ जाती है तो हमारा हाथ क्षण भर में ही अपने आप नुकीली वस्तु से दूर हट जाता है। इसको हम अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कहते हैं। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो उसका भी शरीर में रिफ्लेक्स बन जाता है, जैसे साइकिल चलाना, टाइप करना आदि, इसको कंडीशनल रिफ्लेक्स कहा जाता है। पैरालिसिस में यह रिफ्लेक्स डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें फिजियोथेरेपी कराने का उद्देश्य यह होता है कि मरीज को बेडसोर ना हो, इसके लिए कम से कम हर दो घंटे पर मरीज की अवस्था बदलना बहुत जरूरी होता है, जिससे अधिक समय तक एक स्थान पर दबाव न पड़े। ज्वाइंट स्टिफनेस को रोकने के लिए, मांसपेशी की लंबाई को सामान्य बनाए रखने के लिए शरीर के पूरे जोड़ों की कसरत किसी फिजियोथेरेपिस्ट से

0: कराएं एवं मरीज की देख रेख करने वाले लोग भी कम से कम दिन में 3 से 4 बार व्यायाम कराएं। मांसपेशियों में मजबूती लाने एवं किसी भी कार्य को ठीक तरह से कराने के लिए मरीज को खुद प्रभावित अंग को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां पर आवश्यकता हो वहां पर मदद करनी चाहिए। जैसे जैसे काम होने लगे सहारा कम कर देना चाहिए। सबसे पहले अपने मरीज को करवट, पेट के बल एवं पेट के बल से सीधा लेटना सिखाना चाहिए। इसके बाद बैठना, खड़ा होना एवं चलना सिखाना चाहिए। मरीज को अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करना चाहिए। जैसे ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, उतारना, शौच क्रिया आदि। पैरालिसिस जब ब्रेन स्ट्रोक की वजह से होती है तो उसमें मरीज को बोलने में भी परेशानी होती है। इस समस्या को ठीक करने के लिए मुंह में हवा भरकर कमजोर मांसपेशी वाले होंठ को उंगली से पकड़कर मुंह में हवा भरकर कम से कम 10 सेकंड तक रोककर रखें तथा 5 सेकंड तक आराम करने दें। इस प्रक्रिया को 10-10 बार दिन में 3 व 4 बार करें। न्यूज़पेपर के छोटे टुकड़ों को मुंह से फूंक करके उड़ाना, जलती मोमबत्ती को बुझाना, सीटी बजाना, न्यूज़पेपर बोलकर पढ़ना। अधिकतर यह देखा गया है कि इस बीमारी में मरीज का पैर काफी हद तक जल्दी ठीक हो जाता है और शरीर का वजन भी संभाल लेता है, किंतु उसका हाथ ठीक से कार्य नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरीज अपने प्रभावित हाथ का प्रयोग नहीं करता। पैरों का काम चलने का होता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, उसे मजबूरन चलना पड़ता है, इसलिए पैर जल्दी ठीक हो जाता है। यदि ठीक वाले हाथ के कार्य को स्लिंग लगाकर रोक दिया जाए और सारा कार्य प्रभावित हाथ से कराया जाए, वह हाथ भी ठीक से कार्य करने लगेगा। याद रखें, यदि हम लिखना चाहते हैं तो लिखने से ही लिखावट बेहतर होगी। टाइप करना चाहते हैं तो टाइप करने से ही टाइपिस्ट बन सकते हैं। उसी तरह से इस बीमारी में भी है कि आप जो काम करेंगे उसको हमारा शरीर सीख लेगा। बाकी यह जानकारी केवल आपको जागरूकता के लिए है। अपने मरीज के फिजियोथेरेपी उपचार के लिए फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श अवश्य लें और उनकी सलाह का पालन करें। हर मरीज की परेशानी के अनुसार अलग अलग कसरत हो सकती है।
1: पक्षाघात में फिजियोथेरेपी द्वारा उपचार विषय पर अभी आप डॉक्टर यशवंत कुमार की ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण।

रात 8:15 पर पूरी उड़ीसा में आयोजित होने वाले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर आधारित कर्टन रिजर कार्यक्रम और रात 9:30 चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 आप सुनेंगे प्रियंक कृष्ण का सेक्सोफोन वादन। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा अरुण गुलवाड़ी के गाए भजन।

हुई आदत। लोकगीतों के कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे आकांक्षा भारती और साथी कमला प्रसाद पाल और साथी और शोभा लाल और साथियों के गाए लोकगीत। फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुन सकेंगे दिन में 12:30 पर।

गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहने दिन में 1:15 पर मेरा हुनर मेरा व्यवसाय के अंतर्गत अगरबत्ती मोमबत्ती या साबुन निर्माण का लघु उद्योग विषय पर ये बातचीत सुनेंगी।

0: शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई पंचायत घर कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी से सुनेंगे नीति वचन। शाम 7:31 पर किस्सा गोई के अंतर्गत अजीम शायर मिर्जा गालिब पर आधारित होगा ये आज का कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्ष नेतारं राहुल गांधिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: पूर्वाह्णे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अन्ये दल सदस्याः नीट विषयक चर्चाम् आधृत्य प्रदर्शनम् अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंहः तथा केन्द्रीय गृह सचिवः गोविंद मोहनः लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव जाते नीट परीक्षायाः प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान् विरुध्य दृढ निग्रहं कर्तुम् अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्। असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्। वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मैसेडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती। उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम्

श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं। जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने के दंभी और कपट के धंधों का बोझ होते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं। कहां तो प्रभु का आपार चरित्र और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर राम कथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे।

अभी आप सविता देवी के स्वर में सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। फिल्मों से भजन कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म से प्रशांत इंगोले की रचना, आवाज़ है सुखविंदर सिंह की, रचना है श्रेयस पुराणिक और जैकी वंजारी की।

अब हम आपको मिस्टर सेलिब्रिटी फिल्म की रचना सुनवा रहे हैं। रचना है योगेश पंडित की, संगीत है विनोद यजमान का, आवाज़ है अभिलिप्सा पांड्या की।

और अब अंत में हम आपको गणपत फिल्म की रचना सुनवा रहे हैं। रचना है विशाल मिश्रा की, माफ कीजिएगा, रचना है अक्षय त्रिपाठी की, संगीत है विशाल मिश्रा का और आवाज भी विशाल मिश्रा की।

0: इसी के साथ फिल्मों से भजन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। और शिलान्यास, बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है केंद्र सरकार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जल स्तर बढ़ा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक रिपोर्ट।
2: कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत लगभग 50,000 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य निजी और संबद्ध विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 5% छात्राओं को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने वाराणसी में 500 क्षमता वाले महिला छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य विधानमंडल का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से प्रारंभ होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: कैबिनेट की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेस वे को लेकर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। ये 333 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि प्रयागराज से शुरू होकर भदोही से मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दिए जाने के बारे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके परिवार की आय सीमा 12 लाख रुपए वार्षिक से कम होगी।
3: इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को।
1: उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि योजना की लाभार्थी छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव, अग्निशमन और आपात सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 25 करोड़ 78 लाख रुपए के प्रस्ताव और यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
1: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े उसमें से श्रावस्ती भी एक था। पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही बहराइच में महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के आने से विकास कार्यों और प्रगति के जरिए पिछले 9 सालों में प्रदेश को नई पहचान मिली है।
2: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। कल संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
4: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
5: भगवान श्री रामलला मंदिर के चढ़ावा विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव के पद और न्यासियों के 3 खाली पदों पर विचार विमर्श करेगा और राम मंदिर के पहले CEO के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। बैठक के मद्देनजर SPCT चक्रपाणी त्रिपाठी और ADM City योगानंद पांडे ने बैठक स्थल के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी।
6: डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी देने का उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। यह भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: राजधानी लखनऊ सहित कई

0: प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण पीलीभीत में भी शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है केंद्र सरकार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रियांक कृष्ण का सेक्सोफोन वादन, राग है मलय मारुतम, विलंबित लय एक ताल में और मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपके साथ संगत की श्री गिरधर गोपाल मिश्रा ने। तो आइए सुने प्रियांक कृष्ण का राग मलय मारुतम में सेक्सोफोन वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सैक्सोफोन वादन प्रियंक कृष्ण का। 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
4: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
6: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में

0: माहेश्वरिणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
1: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोस की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहेक श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच यह विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार

0: व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीयों को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी

0: warfare, shallow watercraft, INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approved scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva. And PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी राब्तों में नुमाया तौसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आपदोस्त शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तजारती निज़ाम के तहत अपने अहद का इदा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी ताल्लुकात को वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों से कहा है कि वो तिजारत के अलावा भी सरगर्मियां जारी रखें और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, नीज इख्तिरा पर मबनी तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करें। इस गोपजे के मकाम पर भारत शिमाली मकदूनिया तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि उनके दौरे से, जो किसी भारतीय सदर का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है, इन ताल्लुकात को मुस्तकम करने के भारत के मजबूत इरादे की अक्कासी होती है। सदर मुर्मू ने शिमाली मकदूनिया को डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे में भी भारत के साथ शराकत दारी कायम करने के लिए मदऊ किया, जिससे माली शमूलियत को फ़रोग देने में भारत के UPI प्लेटफॉर्म की कामयाबी का अंदाज़ा होता है।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: शिमाली मकदूनिया के सदर जमहूरिया के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नामा निगार की एक रिपोर्ट।
3: सदर मुर्मू ने कहा कि भारत की दवा साजी की सनद शिमाली मकदूनिया में सरमायाकारी के लिए तैयार है। यह सरमायाकारी वसीतर बलकान और यूरोपीय मार्केट्स के लिए दवाएं और तिब्बी आलात मिलकर तैयार करने के लिए की जाएगी। उन्होंने खुराक की डिब्बाबंदी, गोल्डन चेन, लॉजिस्टिक, बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई, मस्नूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप इको निज़ाम के शोबों में शराकत दारी की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया ने शिमाली मकदूनिया को दावत दी कि वो बैन अलावामी समशी इतिहाद, कुदरती आफात से मुताबिकत रखने वाले बुनियादी ढांचे और आलमी बायो ईंधन इतिहाद जैसे मुश्तरक इकदाम में शिरकत करें। उन्होंने आलमी ऑडियल विजल और तफरीही समिट वेव्स में शिरकत की भी दावत दी, जो भारत में अगले साल मुनक्किद होगी। शिमाली मकदूनिया से सुबह श्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। इसका मकसद सभी के लिए सेहत की सहूलियात, डिजिटल हेल्थ, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी और मयारी हिफ्ज़ान सेहत तक मुसावियाना रसाई दस्तयाब कराना है। इस मीटिंग में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए सेहत के साथ साथ महकमे सेहत के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मजबूती, इख्तिरा, बाहमी तआवुन और पायदारी के लिए तामीर थीम के जरिए अहम आलमी सेहत तरजीहात के सिलसिले में मुश्तरक इकदाम को आगे बढ़ाने के

0: भारत के अज़्म की अक्कासी करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेहत की मरकजी सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि ये वजारती मीटिंग हेल्थ सिक्योरिटी, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी, डिजिटल हेल्थ, इख्तिरा, सस्ती दवाओं की फराहमी और तिब्बी निज़ाम जैसे शोबों में बाहमी तआवुन को मजबूत बनाने पर मरकूज़ होगी। आज आला अहदेदारों की मीटिंग के साथ ही बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ होगा, जिसके बाद कल सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जे पी नड्डा की सदारत में ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मुनाकिद होगी। इस मीटिंग में वज़रा अवामी सेहत से मुतालिक अहम आलमी और इलाकाई तरजीहात पर तबादले ख्याल करेंगे। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: भारतीय बहरिया INS मालवान को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये माहे तर्ज के आबदोज शिकन जंगी जहाज की दूसरी शक्ल है जो गहरे पानी में अपनी कारकर्दगी अंजाम देता है। ये तकरीब आज कर्नाटक के कारवार इलाके में मुनक़िद होगी। INS मालवान को कामकाज में शामिल किया जाना बहरी जहाज़ों को भारत में ही तैयार किए जाने वाले प्रोग्राम के तहत एक अहम कदम है। इस तकरीब की सदारत फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल AP सिंह करेंगे, जिसमें बहरिया के दीगर सरकर्दा अफसरान भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आला तालीम में खवातीन की शिरकत की हौसला अफजाई और खवातीन के तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करने के वाक़ात में कमी लाने के लिए एक बड़ी पहल के तौर पर रियासत की होनहार तालिबात को मुफ्त स्कूटी फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना मीटिंग में रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना पर अमल दरामद से मुतालिक रहनुमा खतूत की मंजूरी दी गई। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि ग्रेजुएट लड़कियों में से शुरू में सरकर्दा 5% तालिबात की फहरिस्त तैयार की जाएगी। इसके बाद इनमें से तालिबात को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर मुंतखब किया जाएगा। इस सरकारी स्कीम के तहत तालिबात को न सिर्फ स्कूटी फराहम की जाएगी बल्कि उन्हें बीमा, रजिस्ट्रेशन, हेलमेट, लाजमी मुतल्लिका सामान और 4 लीटर पेट्रोल भी फराहम किया जाएगा। माजूर तालिबात शहीद फौजियों और बेघर अफराद की बेटियों के लिए आमदनी की हद की शराइत में रियायत दी जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: भारत ने उसूलों पर मबनी शफाफ और किसी तरह की तफरीक से पाक कसीर मुल्की तजारती निज़ाम के तई अपने अज़्म को दोहराया है। भारत ने अपनी इस राय का इजहार आलमी तजारती तंजीम WTO में तजारती पॉलिसी के अपने 8वें जायजे के दौरान किया, जिससे आलमी तजारत में मुल्क के बढ़ते हुए रोल का अंदाज़ा होता है। तजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने आलमी तजारती निज़ाम के साथ भारत की सरगर्मियों और तजारती माहदों का एक वसी तर नेटवर्क कायम करके तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने नर्म रवि पर मबनी गैर मुल्की रास सरमायाकारी के निज़ाम और तरक्की पजीर मुल्कों के माबैन तआवुन की लगातार हिमायत पर भी जोर दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तिजारत के महकमे ने कहा कि भारत सबकी शमूलियत वाली आलमी तरक्की को आगे बढ़ाने में एक काबिल एतबार और काबिल इन्हिसार शराकत दार है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया केस में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ़ करने का अहद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के वाक़ात की रोकथाम के लिए कई इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसे अब मंगल मिलन भी कहा जाता है। इधर सरकार ने कहा है कि वो नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के केस और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए तैयार है। कल शाम नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सरकार की यकीन दहानी के बावजूद नीट से वाबस्ता मामलात पर बहस कराने के अपने पहले के मुतालबे से पीछे हट गए हैं।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इससे पहले दिन में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज

0: बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सरकर्ता लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, नीज समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के सभी लीडरों को रिहा कर दिया, जिन्हें लोक कल्याण मार्ग के नजदीक एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने एक मुबैना वाकये में मौत होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर मुसद्दका जानकारी पर न तो भरोसा करें और न ही इसे शेयर करें। दिल्ली पुलिस ने आवाम को सलाह दी है कि वो दुरुस्त और मुसद्दका जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी वसीलों पर भरोसा करें। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा कल नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर कौमी राजधानी में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वालों की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गए और वहाँ दाखिल सभी जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में अपोजिशन की लीडर राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान रखना पैदा करने के लिए तलबा को सियासी आलायकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब प्रधान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज करते हुए जनाब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने नीट मुआहदे पर जामे बहस कराने के लिए अपनी आमादगी से मुत्तला कर दिया था, इसके बावजूद कांग्रेस ने जमहूरी बहस मुबाहसे के बजाय सियासी तमाशा करने का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस का मकसद तलबा के लिए कोई हल तलाश करना नहीं बल्कि सियासी सुर्खियों में आने के लिए रखना डालना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुंग को कौमी राजधानी के सदर सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो की दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया है। मरकजी सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल करने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है, जिसके तहत 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से बाज रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून साज अरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गद्दे, नीज तानिशा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर HS प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोन जुंग हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में देविका सिहाग थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन ओंगबाम रुंगफन से हार गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेष सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के तीन मुल्कों के सरकारी दौरे से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार ने सदर जमहूरिया के इस बयान को नुमाया किया है कि इक्तसादी तआवुन भारत और शिमाली मकदूनिया के दो तरफा ताल्लुकात की इंतहाई अहम बुनियाद है। वजारत खारजा ने भारत में रूस के सिफारत खाने के नाजिमुल उमूर को तलब करके यूक्रेन में तिजारती जहाज पर हमले में चार भारतीय मल्लाहों की मौत पर एहतजाज दर्ज कराया। इस खबर को प्रताप समेत कई अखबार ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। इसके अलावा आज के अखबार की चंद अहम बैन अलावामी खबरों की सुर्खियाँ इस तरह हैं। हूसियों के बहरी नाकाबंदी किए जाने पर सख्त जवाब दिया जाएगा, सऊदी अरब का इंतबाह।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी रबतों में नुमाया तोसी की ज़रूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की तीन रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क

0: में ही बनाए गए आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निज़ाम के तई अपने अहद का इरादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी वतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, आज 22 जुलाई है, वो दिन जब हमें अपने स्वतंत्र देश के लिए अपना झंडा चाहिए था, जिसे हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फहरा सकें। देश की आज़ादी से कुछ समय पहले ही हमारा राष्ट्रध्वज आज जिस रूप में है अस्तित्व में आया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने पिंगली वेंकैया जी के डिजाइन वाले इस तिरंगे को अपनाया था। तिरंगा हमारे देश का गौरव है, अखंडता और एकता का प्रतीक है। श्रोताओं, झंडा केवल तीन रंगों के कपड़े से बना प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारे वीर शहीदों और देश की जनता का सम्मान है। इस झंडे का सम्मान करना हम देशवासियों का फर्ज है। इसका सम्मान और महत्व केवल एक दिन के लिए ही नहीं, बल्कि हर दिन के लिए होना चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब हम बड़े गर्व से अपने घर, कार्यालयों, स्कूलों में इसे फहराते हैं, तो उसके बाद इसकी इज्जत करना हमारा कर्तव्य होता है। झंडा फटा नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। झंडा ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। झंडे का सम्मान हमारी जान से भी बढ़कर होना चाहिए। जिस झंडे को नहीं झुकने देने के लिए हमारे वीर जवान अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, जिसकी शान बनाए रखने के लिए हमारे देश की सीमाओं पर हमारे वीर सपूत कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए दृढ़ता से खड़े हैं, उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन।

श्रोताओं, हमारे झंडे के तीन रंग तीन बातों को दर्शाते हैं। केसरिया रंग जो सबसे ऊपर होता है, साहस और वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो बीच में है, वो शांति का, और हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच का नीला अशोक चक्र आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। ये हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। झंडा चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे कागज़ का, हमें उसे ज़मीन पर न तो फेंकना है, न ही गिरने देना है। झंडे का सम्मान देश का सम्मान है, हमारा सम्मान है। हम जहाँ कहीं हों, देश या विदेश में हों, नौकरी करते हों, पढ़ते हों, व्यवसाय करते हों, खेती किसानी करते हों, अपने काम को ईमानदारी से करें और याद रखें कि हम जो कुछ भी करते हैं उससे केवल हमारा ही नहीं, हमारे आसपास की जगहों का ही नहीं, हमारे देश का भी गौरव बढ़ता है। इस तरह करके हम जो भी हम अच्छा काम करते हैं उसमें देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। तिरंगा हमारी पहचान है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना और देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करना था। झंडारोहण के कुछ नियम हैं। इसे हमेशा ऊपर की ओर, यानी केसरिया रंग हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। इस तरह से ही हमें इसे फहराना चाहिए। ये कभी कटाफटा गंदा नहीं होना चाहिए। इस पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। तिरंगा केवल राष्ट्रध्वज नहीं, भारत की आत्मा का उज्ज्वल स्वर है, जिसे देखकर हर भारतीय का मस्तक नहीं आत्मसम्मान ऊंचा हो जाता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा।

हमारे वीर सैनिकों को सलाम जो सीमा पर तिरंगे की रक्षा करते हैं। आइए हम ये संकल्प लें कि भ्रष्टाचार, विभाजन और नफरत से ऊपर उठकर देश की सेवा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।

गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने, इसे गाया था सचिन जिगर ने और संगीत भी सचिन जिगर का था। अब हम आपको अथर्व फिल्म से आशी तितोरिया का गाया हुआ ये गीत सुनवा रहे हैं। गीत के बोल लिखे हैं राजा रमेश बुर्रा और रजस ने और संगीत है श्रीचरण पकाला का।

0: अब हम आपको जावेद मोहसिन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत सुनवाएंगे, लेकिन इस संदेश के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
4: और अब अंत में हम आपको सावी फिल्म में जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में रश्मि विराग का लिखा हुआ गीत सुनवा रहे हैं। तर्ज बनाई है जावेद मोहसिन ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण। अगले प्रसारण की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए वाराणसी और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
2: वाराणसी में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रथम पंच सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लेकर ग्रामीण विकास सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता गांवों तक विकास की हर योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से जन भागीदारी बढ़ाने तथा सरकारी योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम जवाबदेह और विकासोन्मुखी बनाना है। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के 350 बिहार के 75 झारखंड के 50 तथा उत्तराखंड के 25 ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विकसित ग्राम पंचायतों की अवधारणा ग्राम स्वराज सुशासन पारदर्शिता जवाबदेही और जन सहभागिता आधारित विकास मॉडल की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर ग्राम प्रधानों ने प्रधानमंत्री आवास योजना मनरेगा स्वयं सहायता समूह ग्रामीण सड़क स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने गाँव के विकास को नई दिशा और गति दी है। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा करते हुए इन्हें गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। सम्मेलन में पंचायतों की संस्थागत तैयारी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ग्राम प्रधान प्रियंका सिंह ने कहा सभी ग्राम प्रधान ग्रामीण विकास को जन भागीदारी से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय कबीचौरा अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल के व्यापक विस्तार एवं आधुनिकीकरण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल को 9 मंजिला अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद पूर्वांचल के लाखों मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। नए अस्पताल में कार्डियोलॉजी न्यूरोसाइंस कैंसर उपचार आधुनिक ऑपरेशन थिएटर 50 से अधिक आईसीयू बेड 100 से अधिक एचडीयू बेड अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट तथा मातृ एवं शिशु चिकित्सा सहित कई सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने वार्डों का जायजा लिया मरीजों से मुलाकात कर उपचार की गुणवत्ता की जानकारी ली तथा चिकित्सकों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता दवाओं की उपलब्धता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हर हाल में सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता पूर्वक आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। कबीचौरा अस्पताल का यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट न केवल वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल के स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा
3: मंडली चिकित्सालय की जो सुविधाएं हैं वो भी रहेंगी और अतिरिक्त भी सुविधाएं आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाएंगे और बेहतर उच्चीकृत सेवाएं करेंगे। एमआरआई सीटी डायलिसिस अन्य सुविधाओं को भी बेहतर से बेहतर कराएंगे। जो भी आवश्यकताएं हैं वाराणसी की मरीजों के हित में सब कुछ पूरे करेंगे।
2: प्रदेश में 24 मार्च से 5 जुलाई 2026 तक संचालित 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान में वाराणसी मंडल ने अग्रणी उपलब्धि हासिल करते हुए विभिन्न प्रमुख सूचकांकों पर 100% प्रदर्शन दर्ज किया है। अभियान के अंतर्गत गांव-गांव एवं शहर-शहर व्यापक स्तर पर टीबी की स्क्रीनिंग जांच एवं उपचार की सेवाएं प्रदान की गयी। अभियान के दौरान हाई रिस्क गाँवों का

0: प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया गया। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर एनडी शर्मा ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर संभावित टीबी मरीजों की पहचान की गई तथा चिन्हित मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराया गया। अभियान में वाराणसी मंडल के चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, जौनपुर एवं गाजीपुर ने सक्रिय सहभागिता निभाई।
1: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद हुसैन नोमानी का।
2: मऊ में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी है, जो शिक्षकों तथा उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी। श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। शिक्षक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि
3: मऊ जिले के लगभग 9,000 शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है और शिक्षक को ही नहीं बल्कि उसके परिवार जनों को भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और माध्यमिक शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, रसोइयों को भी इसका लाभ मिलने वाला है।
2: मऊ जिले में बाढ़ एवं तट कटान से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला अधिकारी आनंद वर्धन ने सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित ग्राम परसिया देवार एवं धर्मपुर विसुनपुर के मध्य प्रस्तावित तट कटान निरोधक परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जिलाधिकारी को परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 566.16 लाख रुपए है। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ एवं कटान प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि परियोजना के प्रत्येक चरण का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी की धारा को सुचारू रूप से प्रवाहित करते हुए तट को सुरक्षित बनाना, नदी के दाएं तट को अस्थायित्व प्रदान करना तथा आसपास के गांवों, कृषि भूमि एवं पक्के मकानों को कटान से बचाना है। मऊ के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पोषण अभियान के अंतर्गत जिला पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कर जनपद में संचालित पोषण संबंधी कार्यक्रमों, संभव अभियान 6.0 तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी रंजीत कुमार ने संभव अभियान 6.0 के 5 प्रमुख घटकों, सामुदायिक जन जागरूकता एवं सहभागिता, कुपोषण की शीघ्र एवं समयबद्ध पहचान, आवश्यक सेवाओं से लाभार्थियों को जोड़ना, नियमित अनुवर्ती अनुश्रवण तथा आवश्यकता अनुसार संदर्भन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संभव अभियान 6.0 की थीम गर्भा अवस्था से बाल्या अवस्था तक पोषण सुरक्षा है, जिसके अंतर्गत जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। साथ ही गंभीर एवं मध्यम कुपोषण की रोकथाम और प्रभावी प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया कि कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी चिन्हित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनका ई कवच पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। मऊ जिले में चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने अभियान को जन भागीदारी के माध्यम से सफल बनाने तथा प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छता एवं रोगों से बचाव का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए साफ सफाई, जल भराव की रोकथाम, फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव तथा व्यापक जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। मऊ जिले में जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पुलिस कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर

0: ने पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्रिय योगदान देने की शपथ दिलाई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। 747 किलोहर्ट्ज पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आइए सुनते हैं संवेद।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में देशगान।
4: मुक्ति के संघर्ष का

आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को है।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम, पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
1: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे डॉक्टर दरख्शां ताजवर के एक मकाले से, जिसका उनवान है सन 1857 की जंग आजादी में उर्दू प्रेस की खिदमत। और इसके बाद कलाम शायर के तहत आज हमने मदऊ किया है मोहतरमा नुसरत जहां को। लेकिन सामईन, आज नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे है, इस हवाले से समाज फरमाइए एक मुख्तसर तकरीर। कौमी इत्तेहाद और जमहूरी अकदार का मजहर तिरंगा। सामईन, आज 22 जुलाई है और आज का दिन मंसूब है हिंदुस्तान के कौमी परचम के हवाले से। पूरे मुल्क में 22 जुलाई को कौमी परचम के दिन के तौर पर मनाया जाता है। हर कौम का कौमी परचम उसकी आज़ादी, खुद मुख्तारी और वक़ार की अलामत होता है। 22 जुलाई सन 1947 को दस्तूर साज असेंबली ने बाज़ाब्ता तौर पर 3 रंगों वाले तिरंगे झंडे को कौमी परचम के तौर पर मंजूर किया था। हिंदुस्तान की आन बान और शान हमारा कौमी परचम, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, जो 3 रंगों पर मुश्तमिल है। ऊपर ज़ाफ़रानी रंग हिम्मत, कुर्बानी और ईसार की अलामत है। दरमियान का सफ़ेद रंग अमन, सच्चाई और पाकीज़गी की नुमाइंदगी करता है, जबकि सब्ज़ रंग खुशहाली, तरक्की और कुदरत से वाबस्तगी का पैगाम देता है। सफ़ेद पट्टी के दरमियान नीले रंग का अशोक चक्र, जिसकी 24 तीलियां मुसलसल हरकत, इंसाफ और तरक्की की अलामत हैं। 22 जुलाई का दिन हमें उन अजीम रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद दिलाता है, जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में हिंदुस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार हुआ। भारत के कौमी परचम को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया। गौरतलब है कि 22 जुलाई सन 1947 को जब दस्तूर साज असेंबली ने तिरंगे को भारत के कौमी परचम के तौर पर मंजूर किया, उसके बाद असल कौमी परचम यानी नेशनल फ्लैग को तैयार किया गया और उसे दस्तूर साज असेंबली के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पेश किया गया। इस कौमी परचम को रेशम पर सुरैया तैयब जी ने अपने हाथों से तैयार किया था। वो मशहूर सरकारी अफसर बदरुद्दीन फैज तैयब जी की अहलिया थीं। सुरैया तैयब जी ने कौमी परचम की तैयारी में नहायत बारीक बीनी और फनकाराना महारत का मुजाहरा किया। उन्होंने अशोक चक्र की खूबसूरत नक्शाकशी की, जिसने तिरंगे की जाज़बियत को नई शान अता की। सुरैया तैयब जी ने भारतीय कौमी झंडे की तश्कील में अपने किरदार को कभी नुमाया नहीं किया। उन्होंने हिंदुस्तान के कौमी झंडे को तैयार करना मुल्क से वफादारी, मुल्क से मोहब्बत और अपना इखलाकी फर्ज समझा। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आज़ाद मुल्क का कौमी परचम उस मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और वक़ार की सबसे बड़ी अलामत होता है। तिरंगे का एहतराम हर हिंदुस्तानी बाशिंदे का इखलाकी और आइनी फ़र्ज है। हम सब बचपन से गाते चले आ रहे हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और हम ये दुआ भी करते हैं कि हमारे मुल्क की शान हमारा तिरंगा अपनी आन बान और शान के साथ हमेशा यूं ही लहराता रहे। सामईन, नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे के मौके पर अभी आप ये मुख्तसर तकरीर समाज फरमा रहे थे। पेश कर रहा था मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल, और आइए अब रुख करते हैं मकाले की जानिब। समाज फरमाइए डॉक्टर दरख्शां ताजवर से उनका मकाला, सन 1857 की जंग आज़ादी में उर्दू प्रेस की खिदमत।
0: सहाफत की दुनिया।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं अरुण गुलवाड़ी। हम आपको सुनवा रहे हैं अरुण गुलवाड़ी के गाए भजन। सबसे पहले लीजिए सुनिए राजेश जौहरी की लिखी हुई ये रचना अरुण गुलवाड़ी के स्वर में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अरुण गुलवाड़ी के गाए भजन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार। प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिया में भारतीय उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि उथल पुथल और व्यवधानों के इस दौर में सबसे अधिक असर आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा है। फिलीपींस के मनीला में आज आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक समय तक हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने

0: किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि उथल पुथल और व्यवधानों के इस दौर में सबसे अधिक असर आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा है। फिलीपींस के मनीला में आज आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक समय तक हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देश अपने भविष्य के प्रति आशावादी हैं और इसीलिए चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष है। विदेश मंत्री आसियान भारत पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठक सहित आसियान फ्रेमवर्क के तहत विदेश मंत्री स्तर की बैठक के लिए दो दिन की यात्रा पर फिलीपींस के मनीला में हैं। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुँच पर विचार विमर्श होगा।
1: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव सहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदारवादी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवाड़ में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकवादियों को शह और सहायता देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी छत्रु इलाके में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों की मदद कर रहा था। इसकी पहचान सिंहपुर के डवाथर निवासी मोहम्मद रफीक नाइक के तौर पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में एक आदर्श और उत्कृष्ट नागरिक के गुणों को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। ये दिन फलों के राजा आम और भारत की समृद्ध आम परंपरा के सम्मान में मनाया जाता है। गोवा का प्रसिद्ध मनकुराद आम अपनी खास खुशबू, मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर संभाग और जम्मू के ठंडे इलाकों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बताया कि अब स्कूल 27 जुलाई को खुलेंगे। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक तेज वर्षा और अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश हो सकती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 371 अंक गिरकर 77,097, जबकि निफ्टी 106 अंक फिसलकर 24,081 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एचएस प्रणॉय कल प्रतियोगिता के शुरुआती राउंड में मलेशिया के खिलाड़ी से हारकर बाहर हो गए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो अगर हमारे अंदर है तो हमारा भला ही भला करती है, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी आदत है जिससे केवल फ़ायदा ही हो, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना देते हुए बता दें, वो है पुस्तक पढ़ने की आदत। जी हाँ, ये एक ऐसी आदत है जो जीवन की मुश्किलों को आसान बना सकती है, लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल ये आदत बहुत कम या कहें तो गिनती के लोगों में ही देखने को मिलती है। श्रोताओं, पुस्तकों को पढ़ने की छूटती आदत हमें यंत्र बना रही है। हमारी समझ, हमारी संवेदना, हमारी रचनात्मकता, हमारी सक्रियता सबको ख़त्म कर रही है। कारण है हम सबके हाथ में हर वक्त हर जगह मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। जी हाँ, पहले जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थीं तो हम कॉमिक्स या कोई पत्रिका या कोई भी किताब जिसमें हमारी रुचि हो हम ख़रीद कर लाते और पढ़ते थे, लेकिन अब डिजिटल युग ने पढ़ाई को भी ऑनलाइन कर दिया है, जिससे हम पन्ने पलटना भूल गए हैं।

श्रोताओं, ये तो बात सही है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, उसके साथ साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी ज़रूरी है, जिसके लिए हमने ये गाना आपको अभी सुनवाया और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हम बात कर रहे हैं कि पुस्तक पठन एक खोती हुई आदत, हमारे इस कार्यक्रम का आज ये विषय है। उसी में हम आगे बढ़ते हुए हम आपको ये बताएंगे, किताबों के पन्ने हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी हैं। यानी अपनी पसंद की किताबों को जब हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय हमारे मस्तिष्क में जो रासायनिक क्रिया होती है, वो हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है, सक्रिय रखती है, मुश्किलों से जूझने का हौसला देती है, शांत रखती है, समस्या पर नहीं समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है, यानी एकाग्रता बढ़ाती है। इतना सब केवल एक आदत से, यानी किताब पढ़ने की आदत से होता है। इस बात का ये मतलब कतई नहीं है कि मोबाइल यूज़ ना किया जाए, बल्कि मतलब ये है कि ज़रूरत भर यूज़ किया जाए। ये जो हम दिन भर मोटिवेशनल रील्स या एंटरटेनमेंट या ऐसी ही कोई रील्स या वीडियोस देख रहे होते हैं, तो इन्हें देखते देखते वक्त कितना चला गया हमें पता ही नहीं चलता। पुस्तकों को पढ़ने से ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह हम तरह तरह के योग व्यायाम आदि करते हैं, उसी तरह अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए हमें अलग अलग तरह के अलग अलग विषयों की किताबों को पढ़ना चाहिए। इससे हमारा तनाव कम होता है। और आपको बता दें कि जिस तरह से स्वस्थ रहने के लिए हम तरह तरह के योग व्यायाम करते हैं ना, उसी तरह से हमें अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा तनाव कम करते हैं, ज्ञान से बढ़ता है, कुछ नया करने की प्रेरणा और उत्साह प्राप्त होता है। कई बार तो ये हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह

स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ खान पान ज़रूरी है, उसी तरह एक सुंदर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए अच्छी किताबों का पढ़ना ज़रूरी है। जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं उनमें जो अच्छी बातें लिखी होती हैं उनमें उससे जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं वो हमें एक नया जीवन दे रहे होते हैं, हमें एक नया इंसान बना रहे होते हैं। किताबों को चुनने में सावधानी ज़रूरी है। महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से हमारी बुद्धि भी कुछ ऊंचा और अच्छा करने की ओर उद्यत होती है। और आपको बता दें कि अहिंसा का पाठ पढ़ाकर और अहिंसा पर चलकर जिन महान शख्सियत ने हमें आज़ादी दिलाई, यानी हमारे बापू महात्मा गांधी जी, उन्हें भी पुस्तक पढ़ने की बहुत ही अधिक आदत थी। बिना पढ़े तो वो सोते ही नहीं थे।

हमारा मस्तिष्क एक संसार रचने लगता है, वो संसार जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मस्तिष्क की रचना, उसकी रचनात्मकता, क्रियाशीलता, वो सब करने में सक्षम होती है। सच तो ये है कि मस्तिष्क हमारे शरीर की शक्ति का केंद्र है, जो हमें असंभव को संभव कर दिखाने की शक्ति प्रदान करता है। धरती से लेकर चांद तक, मंगल और न जाने कितने दुर्गम स्थान जहाँ जाना संभव ही नहीं दिखता था, हमारे ज्ञान ने उसे संभव कर दिखाया। किताबों को पढ़ने से हमारे अंदर धैर्य, शांति, सद्भाव, रचनात्मकता, वाक्य संयोजन, भाषा कौशल का विकास होता है। पढ़ने से ही हमें अपनी बात को मौखिक या लिखित रूप में कहने की समझ विकसित होती है। हम जितना पढ़ेंगे उतना ही भाषा और प्रवाह के लय से परिचित होंगे। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति विकसित होती है, और ये कल्पना जब सच्चाई बनकर हमारे सामने खड़ी होती है तो उसका आधार ये किताबें ही होती हैं। पढ़ना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, फिर वो बच्चे हों, बड़े हों या हमारे घर के वृद्ध हों। अगर हमारा समय नहीं कट रहा तो हम अपनी पसंद की कोई एक किताब चुन लें और कुछ समय निकाल कर किताबों के पन्ने पलटें, तो इससे अच्छा समय का सदुपयोग हो ही नहीं सकता। हमें छोटी छोटी अपनी आदतें बनानी चाहिए, जैसे हम सिर्फ रोज़ 10 से 15 मिनट फ़ोन को साइलेंट पे रखेंगे और किसी एक अपनी पसंद की किताब का एक पन्ना, कम से कम एक पन्ना ज़रूर पढ़ेंगे। ऐसे किसी भी समय जब हमें लगता है कि हम इस वक्त पढ़ सकते हैं, अक्सर चाय पीते वक्त हम टीवी देखने लगते हैं या हम कुछ और करने लगते हैं, तो हम वो ना करके उस समय हम किताब अपने हाथ में ले लें और उसे पढ़ें। कोई अच्छी कहानी, किसी महान व्यक्तित्व की आत्मकथा या कोई मोटिवेशनल या कोई साइंस फिक्शन, ऐसी किताबें पढ़ें। एक ऐसा छोटा सा हम ट्रैक बनाएं और उसमें ये लिखें कि आज हमने क्या पढ़ा और उससे हमने क्या सीखा। अपनी अलमारी को सजाइए सिर्फ कपड़ों से नहीं, किताबों से भी। और ज़रूरत पढ़ने पर ही नहीं, ज़रूरत बनानी पड़ेगी हमें। जिस तरह से हम समय निकाल ही लेते हैं मोबाइल देखने का, या मोबाइल से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसमें हम करने बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने उसकी आदत बना ली है। आदत बनाई जाती है श्रोताओं, जब हम आदत बना लेंगे तो ये भी हमें आसान लगने लगेगा। और याद रखिए कि जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। तो चलिए आज से ही, अभी से पुस्तक पढ़ने की आदत को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। याद रखिए, हर महान व्यक्तित्व की महानता में आधार ये पुस्तकें ही होती हैं। एक कोट है, कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। और एक खूबसूरत सा कोट हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, टेक अ गुड बुक टू बेड विद यू, बुक्स डोंट स्नोर। बात सही है, सबसे अच्छा जीवन साथी वैसे तो होता ही है, लेकिन सबसे अच्छी साथी हमारी ये किताबें होती हैं, जो हमें बिना किसी बाधा के जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती हैं, हमारे साथ साथ चलती हैं, जीवन की हर मुश्किल को आसान बनाती हैं, हमारे जीवन को सजाती हैं, संवारती हैं। ऐसी होती हैं ये किताबें, इसलिए हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि

श्रोताओं याद रखिए कि कोई भी महान तभी बनता है जब उसमें कुछ गुण होते हैं, और ये गुण कुछ तो ईश्वर प्रदत्त होते हैं और कुछ ये हमें किताबें देती हैं। महात्मा गांधी जी जब रेल में चलते थे तो उसमें भी वो किताबें ही पढ़ते थे। APJ अब्दुल कलाम कहते थे, किताबें सपनों को पंख देती हैं। और हमारे आज के जितने बड़े बड़े उद्यमी हैं, चाहे वो बिल गेट्स हों, एलन मस्क हों या और भी जो लोग हों, वो भी किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं। तो आप भी ये शौक़ अपनाइए और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाइए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। आज का विषय था पुस्तक पठन एक खोती हुई आदत। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर नहीं पढ़ रहे थे तो आज से और अभी से इस आदत को ज़रूर अपनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक नई किताब ले आएं अपनी पसंद की और कम से कम उसका एक पन्ना ज़रूर पढ़ें। फिर देखिएगा कि आपके जीवन को वो कैसे बदल देती है वो किताब। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आकांक्षा भारती और साथी, कमला प्रसाद पाल और साथी और शोभा लाल और साथियों के गाए लोकगीत। सबसे पहले हम आपको आकांक्षा भारती और साथियों के स्वर में ये देवी गीत सुनवा रहे हैं।

आकांक्षा भारती और साथियों के गाए लोकगीतों के बाद अब हम आपको कमला प्रसाद पाल और साथियों के स्वर में सुनवा रहे हैं ये लचारी।

अभी आप कमला प्रसाद पाल और साथियों के स्वर में सुन रहे थे ये पूर्वी। लीजिए अब सुनिए शोभा लाल और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

0: और अब अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं शोभा लाल और साथियों के स्वर में ये खेमटा।
1: अरे रूठल सजन के

शोभालाल और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। हमारा आज का ये कार्यक्रम आधारित है एक ही कलाकार पर और हमारे आज के कलाकार

कार्यक्रम फिल्म संगीत। हमारा आज का ये कार्यक्रम आधारित है एक ही कलाकार पर और हमारे आज के कलाकार हैं मनोज कुमार। नमस्कार दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जो पर्दे पर आते हैं और दर्शकों के दिलों में बस जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे पर सिर्फ किरदार नहीं निभाते बल्कि एक पूरी भावना बन जाते हैं। ऐसे ही एक महान कलाकार थे मनोज कुमार, एक ऐसा नाम जिसने देशभक्ति को केवल एक विषय नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक खूबसूरत भावना बना दिया। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर हिंदुस्तान याद आता था, एक ऐसी आवाज जिसमें मिट्टी की खुशबू महसूस होती थी और एक ऐसा कलाकार जिसे देश ने प्यार से नाम दिया भारत कुमार का। आज का ये फिल्म संगीत कार्यक्रम समर्पित है उसी महान कलाकार को जिनकी फिल्मों ने हमें देश से प्यार करना सिखाया, जिनके गीतों ने हमें भावुक कर दिया और जिनकी यादें आज भी हमारे दिलों में उसी शिद्दत से जिंदा हैं। तो आइए इस संगीत में सफर की शुरुआत करते हैं उस गीत से जिसमें देश की मिट्टी की खुशबू है, खेतों की हरियाली है और हिंदुस्तान की आत्मा बसती है।

वाह क्या बात है दोस्तों, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि हिंदुस्तान की धरती को किया गया एक खूबसूरत सलाम है। मनोज कुमार जी के सिनेमा में देशभक्ति का अर्थ केवल सीमा पर खड़ा सैनिक नहीं था बल्कि किसान भी था, जवान भी था, मेहनतकश इंसान भी था और सबसे बढ़कर एक आम भारतीय भी था। और जब देश के प्रति प्रेम की बात हो और दिल खुद ब खुद बोलने लगे

0: सुनते ही हमारे मन में देशभक्ति, भारतीय संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावना जाग उठती है। उनका वास्तविक नाम हरि कृष्ण गिरि गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और उन्होंने दिल्ली में अपना बचपन बिताया। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था और वे अभिनेता दिलीप कुमार से बेहद प्रभावित थे। आगे चलकर उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना नाम मनोज कुमार रखा। मनोज कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1950 के दशक में की। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वे केवल एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सफल निर्देशक, निर्माता और लेखक भी थे। उनकी फिल्मों में देशभक्ति और भारतीयता की गहरी छाप दिखाई देती थी। वर्ष 1965 में आई फिल्म शहीद में उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की भूमिका निभाई। इसके बाद उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी फिल्मों में उन्हें एक ऐसी पहचान दी जिसके कारण लोग उन्हें प्यार से भारत कुमार कहने लगे।
1: हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते, फोन इन प्रोग्राम हेलो अनुरोध में स्वागत है। हम शायस्ता

श्रोताओं, मनोज कुमार जी की फिल्मों ने किसानों, जवानों, गरीबों और आम भारतीयों के जीवन को पर्दे पर आवाज दी। मनोज कुमार जी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें पद्मश्री और भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मानों में से एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मनोज कुमार जी का सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि उसमें देश प्रेम, सामाजिक जिम्मेदारी और भारतीय मूल्यों का संदेश भी था। उन्होंने अपने अभिनय और फिल्मों के माध्यम से करोड़ों दर्शकों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाई। मनोज कुमार जी का जीवन और उनका सिनेमा हमें ये संदेश देता है कि एक कलाकार केवल पर्दे पर अभिनय नहीं करता, बल्कि वो समाज और देश की सोच को भी प्रभावित कर सकता है। मनोज कुमार जी भारतीय सिनेमा के वो महान कलाकार हैं जिनका नाम हमेशा देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के साथ याद किया जाएगा।

श्रोताओं, आज हमने गीतों के बहाने एक ऐसे महान कलाकार का सफर तय किया जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन अपने सिनेमा से देश को एक संदेश भी दिया। उन्होंने हमें बताया कि देश प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। मनोज कुमार जी का नाम हिंदी सिनेमा में हमेशा उस कलाकार के रूप में याद किया जाएगा जिसने पर्दे पर भारत को जिया, भारत को महसूस किया और भारत को आवाज दी। इसीलिए तो पूरा देश उन्हें प्यार से कहता है भारत कुमार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में शिकार फिल्म से। संगीत है आनंद राज आनंद का, शब्द रचना देव कोहली की।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवा रहे हैं वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाज़ में बुलेट राजा फिल्म का ये गाना। संगीत है साजिद वाजिद का, शब्द रचना कौशर मुनीर की।

एमएस धोनी फिल्म का ये गाना सुनिए पलक मुच्छल की आवाज़ में। संगीत है अमाल मलिक का, शब्द रचना मनोज मुंतशिर की।

राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाज़ में दबंग फिल्म का ये गाना आपने सुना। इस गाने में संगीत निर्देशन किया था साजिद वाजिद ने, शब्द रचना थी फैज अनवर की। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आशिकी 2 फिल्म से। आवाजें हैं तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की, शब्द रचना इरशाद कामिल की, संगीत जीत गांगुली का।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में एनएचपीसी की तीस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुखद दुर्घटना में जान मान की हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने

वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण

0: मल्लिका अर्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवान को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Both the Houses of Parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha assembled, Speaker Om Birla tried to take up the questioner, but the opposition members raised the issue of paper leak and student protest. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House, but the opposition members continued with the protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. When the proceedings began at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan expressed grief over loss of lives during a tragic accident at the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project in Sikkim. The House conveyed condolences to the bereaved families. After that, the Chairman allowed the Leader of the Opposition, Mallikarjun Kharge, to speak on the matter he wants to raise. Mr. Kharge raised the issue of student protest over the NEET issue. But due to uproar by the opposition and treasury benches, the upper house was adjourned till 12 noon. The Indian Navy inducted the second anti-submarine warfare shallow water craft of the Mahe class INS Malvan at Karwar in Karnataka today. This is a significant achievement in India's indigenous worship.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर प्रियंक कृष्णा का सैक्सोफोन वादन। दिन में 12:30 पर सुनिएगा हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की। 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

शाम 5:15 बजे युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे कमला प्रसाद पाल और साथियों से लोकगीत और डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी से नीति वचन।

शाम 7:31 पर सुनिएगा किस्सा गोई, अजीम शायर मिर्जा गालिब पर आधारित, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। रात 8:30 पर सबरस, 10 बजे फिल्म संगीत। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए प्रियंक कृष्णा का राग मेघ में सैक्सोफोन वादन। मध्य लय अद्धा तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत की है श्री गिरधर गोपाल मिश्र ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रियंक कृष्णा का राग मेघ में सैक्सोफोन वादन। आपके साथ तबले पर संगत की थी श्री गिरधर गोपाल मिश्र ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: महेंद्र यादव मुन्ना बरौठंडिया प्रयागराज से।
0: जी महेंद्र जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हम तुम्हारे हैं संत फिल्म का साथी रे, कैसा सिला दिया,
0: कैसा सिला दिया, सब कुछ भुला दिया। तो भाई शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और सलमान खान की ये फिल्म थी।
1: हाँ जी।
0: तो आपकी पसंद का ये गाना सुनवाया जाए या किसी का नाम लेना चाहते हैं आप?
1: जी वो हमारी मिसेज रेखा यादव जी।
0: अच्छा,
1: हमारे बच्चे आयुष और अनन्या।
0: तो आप सुनिए अपनी पसंद का हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का ये।

0: नुमाइश कार्यक्रम। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार जी।
1: मेरा नाम नितेश आर्या है
0: जी नीतीश जी, बहुत दिनों के बाद आपकी भी कॉल आई।
1: जी। मैम, आपके कार्यक्रम सुनते थे पर कॉल कभी कभी नहीं कर पाते थे।
0: अच्छा, तो बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: फिल्म का नाम है जिस
0: जी।
1: गाने बोलने जादू है नशा।
0: बड़ा ही मधुर सा गीत है ये सुनने में।
1: जी, श्रेया घोषाल जी ने गाया है।
0: श्रेया घोषाल की आवाज है जी, बिल्कुल सही कहा आपने नीतीश जी। तो आपकी फरमाइश का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: पायलट मैडम, बहुत बहुत नमस्कार आपको।
0: नमस्कार जी,
1: कैसी हैं मैम आप?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप हमारे श्रोताओं को अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए।
1: मैं विकास, दादनपुर प्रयागराज से ट्रक ड्राइवर।
0: जी जी, विकास जी का बहुत दिनों के बाद कॉल आया। कहाँ थे विकास जी आप?
1: जी अपना ट्रक चला रहे थे और आपका
0: अच्छा।
1: रेगुलर। जी जी जी
0: जी विकास जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है आज की आवाज
0: जी,
1: और महेंद्र कपूर साहब की आवाज में ये गाना है, दिल है दिल ने दे दिया है।
0: आपकी पसंद का ये गाना तो हम जरूर सुनवाएंगे विकास जी। किसी का नाम तो नहीं लेना चाहते?
1: जी हमारे नितेश आर्या जी हैं और बाकी आकाशवाणी प्रयागराज को वो ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: अच्छा अच्छा, चलिए तो फिर
1: हमारे सारे दोस्तों के लिए भी ये है।
0: अच्छा, तो महेंद्र कपूर की आवाज में आज की आवाज फिल्म का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना
1: हाँ
0: नाम बताइए।
1: पवन निषाद नेवी क्लब बनपुखरा।
0: जी पवन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: चांद के पार फिल्म का।
0: चांद के पार चलो फिल्म का ये गाना पवन जी की फरमाइश है। तो पवन जी आपकी इस फरमाइश
1: दोस्तों
0: को,
1: का नाम लेना चाहते हैं मैं।
0: हाँ जी बिल्कुल ले लीजिए।
1: मेरे परम मित्र हैं दीपक निषाद।
0: जी
1: हाँ
0: तो आपको सुनवाए आपकी पसंद का गीत।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार,
1: अभिमन्यु बोल रहा हूँ मैम।
0: जी अभिमन्यु जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: राम सेवपुर प्रयागराज।
0: जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गाने का बोल है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: जी तो आपकी पसंद का गाना लता जी की आवाज में लीजिए, सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपलब्धि, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया।

दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को

0: तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. forming opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on the feet protesting on the paper leak issue. Speaker Om Birla urged the opposition to cooperate for smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. He stated that the government is ready for discussion since day one. The minister said any discussion in the House must be conducted under established rules and requires proper arrangements. He requested floor leaders of all parties for the duration and the rule under which the discussion will be held. Mr. Rijiju emphasized that the government wants a meaningful and constructive discussion involving all sides, keeping in mind the future of the youth of the country. K.C. Venugopal of the Congress and Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party raised the issue of student protests. Speaker Om Birla said the government is ready for discussion on the issue and everyone must come together for the timing of the discussion. As the pandemonium continued, Mr. Birla adjourned the house till 2 p.m. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. The Indian Navy inducted the second anti-submarine warfare shallow water craft of the Mahe class INS Malvan at Karwar in Karnataka today. This is a significant achievement in India's indigenous warship building. Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Air Staff, was the chief guest at the ceremony. Speaking on this occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh appreciated the Navy for its efforts towards Atmanirbhar Bharat and said that the INS Malvan will play a crucial role in maritime security of the country's coastal region. INS Malvan anti-submarine watercraft built by Cochin Shipyard under Atmanirbhar Bharat mission uses more than 80% indigenous equipment and technology.
1: As far as naval shipbuilding is concerned, India has always had an edge and we had carried our legacy forward in making ships.

0: So very good progress has been made in our Atmanirbharta as far as shipbuilding is concerned. I just hope that, you know, other two services, especially Indian Air Force, learns the lesson as to how Indian Navy has been able to, you know, get this whole concept right, where you have your Indian Navy officers who are embedded in your shipbuilding right from the beginning.
1: In Sikkim, search and rescue operation is on for the third day today to evacuate people trapped inside the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project at Samardung in Namchi district. Official sources said that 12 bodies have been recovered so far and 13 persons are believed to be trapped inside the ill-fated tunnel. Governor Om Prakash Mathur and Chief Minister Prem Singh Tamang Gole visited the accident site yesterday. Chief Minister announced to set up a high-level inquiry to find out the causes of the incident. Mr. Gole further said that the incident might have happened due to the explosion of methane gas and not because of landslides. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 16 metro stations have been closed till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprasth, Khan Market, Jorbagh, and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House, and Central Secretariat. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today participated in the Quad Foreign Ministers meeting at Manila in Philippines. In a joint statement, India, Japan, Australia, and United States reaffirmed the commitment to strengthen a free and open Indo-Pacific and unwavering support for ASEAN unity and centrality. During the meeting, they focused on regional challenges and opportunities to support the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. Key discussion areas include maritime and transnational security, economic prosperity, critical and emerging technologies, and emergency response. They are united in the conviction that peace and stability in the Indo-Pacific maritime domain underpin the security and prosperity of the region. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल रियासती काबीना की मीटिंग में 18 तजावीज को मंजूरी दी गई। काबीना की मीटिंग के बाद फैसलों का इंकशाफ करते हुए वजीर खजाना और पार्लिमानी अमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने कहा कि काबीना ने विंध्या एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। ये 333 किलोमीटर लंबा होगा, जो प्रयागराज से शुरू होकर भदोई से मिर्जापुर के रास्ते सोनभद्र जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपये लागत आएगी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम के तहत ग्रेजुएट तालिबात को मुफ्त स्कूटर फराहम किए जाने के बारे में रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस स्कीम से इन लोगों को फायदा पहुंचेगा जिनकी खानदानी आमदनी की हद सालाना 12 लाख रुपए से कम है। आला तालीम के वजीर ने कहा कि इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाली तालिबात के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना लाजमी होगा। यह कदम आला तालीम में लड़कियों की शराकत दारी बढ़ाने और ड्रॉप आउट की शरह को कम करने के लिए उठाया गया है। हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
3: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: इसके अलावा रियासती काबीना ने उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के बस बेड़े के लिए 250 नए इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी जैसी तजावीज को मंजूरी दे दी। आग और हंगामी खिदमात को मजीद मौसर बनाने के लिए 25,78,00,000 रुपए की तजावीज और यूपी आउटसोर्स सर्विसेज कारपोरेशन को 20 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्ज की फराहमी के लिए तजावीज की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से ज्यादा के 83 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में श्रावस्ती जो के पुरजोश इजला में से

0: एक है, तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंच गया है। कल ही वजीरे आला ने बहराइच के मैसी और नानपारा असेंबली हलकों के लिए 352 करोड़ रुपए से ज्यादा के 70 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि रियासत ने गुज़िश्ता 9 सालों में वजीरे आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में डबल इंजन वाली हुकूमत के आने के बाद तरक्याती कामों और तरक्की के जरिए एक नई शिनाख्त हासिल की है।
1: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज अयोध्या में एक अहम मीटिंग करेगा। भगवान श्री राम लला मंदिर के चढ़ावे से मुतल्लिक जारी तनाजों के दरमियान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मीटिंग के दौरान जनरल सेक्रेटरी के ओहदे और ट्रस्टी के 3 खाली ओहदों पर गौर करेगा। राम मंदिर के पहले सीईओ के इंतखाब के अमल को भी हतमी शक्ल दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी आज रियासत भर के तमाम 403 असेंबली हलकों में एक साथ बूथ कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद कर रही है। इस तकरीब से बीजेपी की तंजीमी ताकत में एक नई जहत शामिल होने की उम्मीद है। बीजेपी के पास रियासत में कुल 1,77,516 बूथ हैं। इन तमाम बूथों पर बैक वक्त कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करके यूपी बीजेपी एक रिकॉर्ड कायम करने वाली है। इस मौके पर यूपी बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी लहरपुर सीतापुर में, बरेली में होने वाली कॉन्फ्रेंस में नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य शिरकत करेंगे, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, लखनऊ में होने वाली कॉन्फ्रेंस की कयादत वजीर तवानाई अरविंद कुमार शर्मा करेंगे। ये जामे प्रोग्राम पार्टी की जमीनी सतह पर तैयारियों को मजबूत बनाने और आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली को बाइख्तियार बनाने का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर में खराब मौसम की वजह से श्री अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा चौथे दिन भी शुरू नहीं हो सकी। इंतजामिया ने इन जायरीन को हफ्ते की शाम को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की खराब मौसम की पेशगोई के पेश नजर रोक दिया था। और राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई जिला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से रियासत में कई नदियों की सतहयाब में इजाफा हुआ है। शारदा नदी पलियाकला लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाराबंकी में जहां घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब है, वहीं पीलीभीत में दरियाए शारदा के पानी की सतह भी उत्तराखंड के पहाड़ों में मुसलसल बारिश की वजह से काफी बढ़ गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। बहने सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: श्रोताओं, कभी आपने सोचा कि एक आवाज़ बिना किसी चेहरे के कैसे करोड़ों लोगों की अपनी आवाज़ बन जाती है? वो सुबह जगाती है, दोपहर में जानकारी देती है, शाम को मुस्कुराहट बांटती है और रात में यादों के गीत सुनाकर दिलों को सुकून देती है।
1: जी हाँ, और श्रोताओं, सबसे ख़ास बात ये है कि उस आवाज़ को सुनने के लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती, बस एक दिल चाहिए जो सुनना जानता हो। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ मंदाकिनी।
0: और मैं हूँ संगीता। आवाज़ों की इस खूबसूरत दुनिया में आपका सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। श्रोताओं, रेडियो जहाँ हर आवाज़ अपनेपन का एहसास कराती है। श्रोताओं, यानी कि कल है एक ख़ास दिन और वो तारीख बहुत ही ख़ास है और ये एहसास कराती है अपनेपन का।
1: बिल्कुल संगीता जी, कल यानी बृहस्पतिवार 23 जुलाई का दिन सिर्फ तारीख नहीं बल्कि भारत के संचार इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। जी हाँ,

0: क्योंकि 23 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है।
1: भाई लेकिन मंदाकिनी जरा ठहरिए, अभी हम ये नहीं बताएंगे कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्यों खास है, क्योंकि हर कहानी की एक अपनी भी कहानी होती है। तो इस दिलचस्प कहानी का आरंभ करेंगे, लेकिन श्रोताओं कल्पना कीजिए कि साल 1927 चल रहा है, जहां ना मोबाइल है, ना टेलीविज़न, ना ही इंटरनेट है, फिर भी एक ऐसी तकनीक जिसने लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी एक साथ जोड़ दिया है।
0: लोग शाम होते ही अपने रेडियो सेट के आसपास इकट्ठा हो जाते थे, किसी को समाचार सुनने की उत्सुकता होती थी तो किसी को गीतों का इंतज़ार, तो कोई सिर्फ उस परिचित आवाज़ को सुनकर ही खुश हो जाता। और शायद तभी किसी ने कहा होगा, आवाज़ें केवल सुनाई नहीं देती, वो रिश्तों को भी बनाती हैं।
1: तो आइए अगले कुछ मिनटों में हम साथ मिलकर करेंगे समय की एक अनोखी यात्रा, जानेंगे उस दिन की कहानी जिसने भारत में प्रसारण के एक साथ नए युग की शुरुआत की, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
2: अंकान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और मंदाग्नी, हम बात कर रहे थे हम रेडियो की, है ना, रेडियो प्रसारण दिवस की। तो श्रोताओं, अब समय है उस सवाल का जवाब जानने का जो शायद आपके मन में भी होगा। आखिर हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस क्यों मनाया जाता है?
1: तो संगीता जी, इसका जवाब हमें एक सदी पीछे ले जाता है। साल था 1927 का। तब भारत में संचार के बहुत ही लिमिटेड साधन हुआ करते थे। जो समाचार होता था वो दूर दराज तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। ऐसे समय में एक नई उम्मीद ने दस्तक दी और फिर आया 23 जुलाई 1927 का समय, वो ऐतिहासिक दिन जब बॉम्बे यानी मुंबई से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने नियमित रेडियो प्रसारण शुरू किया।
0: और मंदाग्नि, शायद उस समय किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये छोटी सी शुरुआत एक दिन पूरे भारत की आवाज बन जाएगी। और धीरे धीरे रेडियो की पहुंच बढ़ती गई, लोगों को घर बैठे समाचार मिलने लगे, संगीत सुनाई देने लगा और देश दुनिया की बातें सीधा उनके कानों तक पहुंचने लगी।
1: बिल्कुल संगीता जी, कुछ वर्षों बाद यही जो प्रसारण सेवा आगे बढ़ते बढ़ते आकाशवाणी के रूप में पूरे देश की पहचान बन गई। इसकी मधुर आवाज आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है।
0: लेकिन श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा कि अगर रेडियो ना होता तो आजादी के आंदोलन की खबरें, किसानों तक मौसम की जानकारी, सैनिकों के लिए संदेश और दूर दराज के गांवों तक शिक्षा कैसे पहुंचती? यही कारण है कि रेडियो केवल एक मशीन नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और देश को जोड़ने वाला एक मजबूत पुल है।
1: जी हाँ, और बात करें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौर की, तो इस दौर में भी रेडियो प्रसारण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस समय संचार के साधन सीमित थे। रेडियो प्रसारण के माध्यम से देश दुनिया की घटनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचती थी। सबसे बढ़कर भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान कुछ प्रसारण ने लोगों का मनोबल बढ़ाया और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया।
0: और मंदाग्नि, आज़ादी मिलने के बाद भी रेडियो ने राष्ट्रीय निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का संदेश घर घर तक पहुंचाया। श्रोताओं, जब भी देश पर कोई कठिन समय आया, चाहे वो बाढ़ का हो, चक्रवात हो या कोई अन्य आपदा हो, रेडियो ने लोगों तक समय पर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और पता है मंदाग्नि, ये तो आपदा की बात है, और जब हम क्रिकेट सुनते थे पहले तो रेडियो पे सुनते थे और एक जो शोर होता था ना कि अब क्या कौन सा क्या पड़ा,
1: अरे वो छक्का पड़ा, उस शोर से ही अंदाजा लगा दिया जाता था कि ये बॉल बाउंड्री के पार जानी है या अंदर रहनी है, यानी वो सिक्स जाएगा या फोर। वो शोर और जो कमेंटेटर्स होते थे संगीता जी, जिस मॉड्यूलेशन के साथ कमेंट्री करते थे, जो उनकी आवाज की पिच होती थी, जैसे उनका अंदाज होता था, उससे ही अनुमान लगा दिया जाता था अब ये होने वाला है।
0: बिल्कुल, मतलब जब हम बचपन में सुना करते थे तो हम खुद मतलब उछल के तालियां बजाते थे, तो वो जो मतलब एक एहसास था वो एक अलग ही एहसास था, है ना?
1: और उस समय वो लोगों को कैसे इकट्ठा किया करता था, देखिए कहीं एक ट्रांजिस्टर बज रहा होता था और उसके आसपास घेरा लगा के कितने लोग बैठा करते थे।
0: बिल्कुल सही।

0: कहा। और देखो, जब श्रोताओं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें उन सभी उद्घोषकों, तकनीशियनों, समाचार वाचकों, कलाकारों और अनगिनत कर्मियों के योगदान को भी याद करने का अवसर देता है, जिन्होंने अपनी आवाज और मेहनत से प्रसारण को जन-जन तक पहुंचाया।
1: और संगीता जी, आज भी करोड़ों लोग FM रेडियो, हाँ, सामुदायिक रेडियो और ऑनलाइन रेडियो एप्स के माध्यम से हर दिन रेडियो पर प्रसारित होने वाले सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: बिल्कुल मंदाकिनी। और देखो, तकनीक बदल गई है, लेकिन रेडियो की आवाज़ आज भी उतनी ही भरोसेमंद और अपनापन देने वाली है।
1: संगीता जी, यही कारण है कि 23 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें याद दिलाता है कि आवाज़ों का ये सफ़र आज भी जारी है और आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उन तक ये पहुंचता रहेगा। और हम इस तरह आप तक ये जानकारियां गीत संगीत के माध्यम से आपका मनोरंजन करते रहेंगे, और मनोरंजन के लिए गीत संगीत ज़रूरी है।
0: मंदाकिनी भाई, मैं समझ गई आपका इशारा, आप क्या कहना चाहती हैं। तो चलिए, अपने श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं इस गीत के माध्यम से।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं गृहलक्ष्मी कार्यक्रम और ट्यून्ड है 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। और मंदाकिनी देखो, गीत से पहले हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की। तो श्रोताओं, रेडियो वर्षों से केवल समाचार सुनाने का ही माध्यम नहीं रहा है, बल्कि समाज को जागरूक करने की और नई सोच देने और बदलाव की प्रेरणा देने का विश्वसनीय साथी रहा है। इसी विश्वास के साथ आज रेडियो की ये आवाज़ उन लाखों महिलाओं तक पहुंच रही है जो अपने परिवार की ताकत है, अपने समाज की पहचान है और हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: और श्रोताओं, कहा भी गया है, स्वस्थ नारी खुशहाल परिवार, सम्मानित नारी सशक्त समाज, स्वावलंबी नारी आत्मनिर्भर भारत का आधार। पर श्रोताओं, क्या ये कहना सिर्फ पर्याप्त है?
0: नहीं, कहते हैं एक महिला केवल एक व्यक्ति नहीं होती, वो पूरे परिवार की धड़कन होती है। जब वो मुस्कुराती है तो घर में खुशियाँ खिलखिलाती है, जब वो स्वस्थ रहती है तो परिवार निश्चिंत रहता है, जब वो आत्मनिर्भर बनती है तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी मजबूत हो जाता है।
1: लेकिन संगीता जी, एक सवाल ये है कि क्या जो महिला पूरे परिवार का ध्यान रखती है वो अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रख पाती है? क्या उसे हर जगह वो सम्मान मिलता है जिसकी वो हकदार है? और क्या उसे अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिल पाता है? यही वो सवाल है जिनका हम जवाब खोजने का प्रयास कर रहे हैं आज। भाई, एक हमारी जो चर्चा है इन्हीं पे प्रेरित है, और वो है स्वास्थ्य, सम्मान और स्वावलंबन।
0: तो मंदाकिनी, सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। अक्सर कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन क्या हम इस धन का सही महत्व समझ पाते हैं? खासकर महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते कई बार अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देती हैं। समय पर भोजन न करना, पर्याप्त नींद न लेना, नियमित स्वास्थ्य जांच न कराना, ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना मंदाकिनी, वो आगे चलकर बहुत ही बड़ी समस्या का कारण भी बन सकती हैं।
1: बिल्कुल संगीता जी, स्वास्थ्य केवल शरीर का ही नहीं मन का भी होता है। यदि मन प्रसन्न रहेगा तो तनाव कम होगा, जब जीवन की चुनौतियों का सामना करना भी हम आसान समझेंगे। इसलिए अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। कोई स्वार्थ नहीं है कि आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग, पर्याप्त नींद और समय समय पर स्वास्थ्य जांच, ये 5 आदतें अगर हर महिला ने अपना लिया तो हमेशा वो स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ जीवन का हिस्सा बनी रहेगी।
0: और अब बात करते हैं मंदाकिनी सम्मान की। मंदाकिनी, सम्मान केवल शब्दों से ही नहीं मिलता है, व्यवहार से दिखाई भी देता है। एक बेटी जो होती है उसकी शिक्षा का अक्सर जो घर में जो होते हैं उसका निर्णय जो होता है, बेटी का भी जो निर्णय होता है ना, उसको भी लेना चाहिए। और जो महिलाओं की जो राय होती है, अक्सर क्या होता है कि अगर कोई महिला अपनी राय देती है किसी भी विषय पे तो उसको चुप करा दिया जाता है, तो भाई ये तो बहुत ही गलत होता है। और देखो, चाहे वो घर हो या कार्यस्थल हो, कोई भी अगर महिला जॉब कर रही है तो उसकी भी सुरक्षा का और सम्मानजनक आत्मविश्वास भी जो उसको होता है वो बढ़ाता है। ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि उसकी जो सुरक्षा है वो भी रहे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये देखो, अगर नहीं महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो वो भाई कैसे करेगी, आगे कैसे वो बढ़ेगी।
1: बिल्कुल संगीता जी, अब आते हैं तीसरे और बेहद

0: महत्वपूर्ण पहलू पर, और वो है स्वावलंबन, जिसका अर्थ है केवल नौकरी करना नहीं। यदि कोई महिला अपना छोटा सा व्यवसाय चला रही है तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, खेती है, हस्तशिल्प है, या किसी कौशल के माध्यम से परिवार की आय बढ़ा रही है, तो वो भी स्वावलंबन का शानदार उदाहरण है।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी, आज सरकार की अनेक योजनाएं स्वयं सहायता समूह, कौशल विकास कार्यक्रम और डिजिटल माध्यम महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर दे रही है। बस आवश्यकता है केवल एक कदम बढ़ाने की। तो आइए आज हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें कि हर महिला अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, हर परिवार महिलाओं का सम्मान करेगा और हर बेटी को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिलेगा। अब इस चर्चा के बाद मंदाकिनी आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।

0: क्या बात है संगीता जी, आनंद आ गया गीत सुनकर।
1: आया ना।
0: बिल्कुल। और चलिए भाई, अब वक्त हो चला है हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट का, जो है मेरा हुनर मेरा व्यवसाय। और आज हम यहाँ लेके आए हैं एक ऐसा व्यवसाय जिससे आज हमने जो आगाज किया है रेडियो का, वो है उसी से मिलता जुलता ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग, यानी आवाज की ही दुनिया है।
1: बिल्कुल। तो सखियों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी जो मधुर, स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज भी आपकी कमाई का माध्यम बन सकती है? यदि आपको कहानियां सुनना पसंद है, तो ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। अगर आपको कहानियाँ सुनना है या आप कहानियाँ लिखते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ आप लिख करके आप अपना अपना भविष्य बना सकते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और संगीता जी, आजकल लोग व्यस्त जीवन के कारण किताबें पढ़ना भूल से गए हैं। नहीं,
1: बिल्कुल।
0: उनके बजाय उन्हें वो सुनना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि समय की व्यस्तता होती है, लोग अपना समय बचाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल
0: वो चाहे विद्यार्थी हों, नौकरी पेशा वाले लोग हों, वरिष्ठ नागरिक हों, या फिर दृष्टिबाधित लोग हों, हाँ, ऐसे इनकी बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि ऑडियो बुक्स का उपयोग करते हैं। ऐसे में अच्छी आवाजें लोगों की उसके लिए लोगों की मांग बढ़ती जा रही है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अगर आप अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छी आपकी जो आप पढ़ रहे हैं, आपका रिवीजन अच्छा है, तो आप अपनी आवाज़ दे करके इसको आप अपनी कमाई का साधन बनवा सकते हैं। और शुरुआत करने के लिए आप किसी बड़े स्टूडियो की आवश्यकता नहीं है। आपको एक शांत कमरा, एक अच्छा माइक्रोफोन, मोबाइल या कंप्यूटर और थोड़ी सी रिकॉर्डिंग व एडिटिंग की जानकारी ही काफ़ी है। नियमित अभ्यास से उच्चारण, आवाज़ का उतार चढ़ाव और जो भावपूर्ण प्रस्तुति है ना, उसमें आपके निखार आता है।
0: आप शुरुआत में बच्चों की कहानियाँ, प्रेरणादायक लेख और साथ में कविताएं या सार्वजनिक डोमेन की पुस्तकों का वाचन रिकॉर्ड कर अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकती हैं। इसके बाद प्रकाशकों, लेखकों और ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म के साथ काम करने का अवसर आपको मिल सकता है, और यही धीरे धीरे आपका सफल व्यवसाय बन सकता है।
1: याद रखिए, आपकी आवाज़ सिर्फ आपकी पहचान नहीं, बल्कि आपकी आय का एक सशक्त माध्यम भी बन सकती है। कि देखिए भाई, जो महिलाएं होती हैं या बच्चे हैं, वो अपना ये आवाज़ अपनी दे सकते हैं। जैसा कि मंदाकिनी ने कहा, कविताएं आप दे सकते हैं, आप छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, छोटे छोटे मतलब कविताएं लिख करके, छोटी छोटी कहानियां लिख करके आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: और संगीता जी, जैसा कि छोटे बच्चे देखिए कितने कार्टून पसंद करते हैं,
1: बिल्कुल
0: आपने कभी देखा है उसमें जो आवाज़ें दी जाती हैं, एक किसी भी कैरेक्टर को उठा लेते हैं और जैसे उसकी मिमिक्री की जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, खास तौर
1: बिल्कुल
0: पे आजकल जो फॉरेन मूवीज़ हैं, जैसे जो दूसरे देश की फिल्में हैं, आप देखें तो उनका भी जो है, और जो क्या नाम है उसको भी हम डबिंग करते हैं
1: हाँ
0: अपने भाषा में कभी।

0: आप चाहे वो हिंदी हो चाहे किसी भी लैंग्वेज की आप बात कर लीजिए, उसमें डबिंग ये भी एक अच्छा करियर हम चूज कर सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं
1: बिल्कुल.
0: अगर आप इसमें सक्षम हैं, आपके पास ये ऐसा स्किल है, टैलेंट है कि आप जो है उन आवाज़ों को एक्सप्रेशन के साथ, अपने आवाज़ के जादू के साथ डबिंग में प्रयोग करें तो बहुत ही आप सफल हो सकती हैं.
1: तो सखियों, अगर आपकी आवाज़ में आत्मविश्वास है और पढ़ने का शौक़ है तो आज ही इस हुनर को अपनी पहचान बनाइए, और इसके लिए इससे आप अपना व्यवसाय बना सकते हैं, अपनी तकदीर बदल सकते हैं.
0: बिल्कुल. और हम भाई अपने कार्यक्रम में इसीलिए इन सभी चीज़ों को संकलित करते हैं जिससे आपका मनोरंजन बना रहे, और इसी मनोरंजन को आगे बढ़ाते हुए वक्त हो चला है एक गीत का.

0: मंदाकिनी, भई गाने तो बड़े अच्छे सुनाए तुमने।
1: धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत ही पसंद आया होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो और श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में नए नए सेगमेंट लेके आते रहते हैं, और आज जो सेगमेंट है वो है सेहत ज्ञान का। और संगीता जी, हम अपने श्रोताओं को इस सेगमेंट में बताएंगे किशमिश खाने के फायदे।
0: तो भाई इसके जो फायदे हैं ना मंदाकिनी, वो बहुत सारे फायदे हैं। तो भाई हम अपने श्रोताओं को बताएंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। देखो, इसमें होता है ना आयरन होता है, जो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर में उसको बढ़ाता है। कि जो जैसे किसी के अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो इसको खा सकते हैं, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है।
1: बिल्कुल। और आपकी जो खून की कमी है वो बढ़ जाएगी। और संगीता जी, इसमें सबसे बड़ा गुण होता है पाचन शक्ति को बेहतर बनाने का, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है। जैसे लोगों को कब्ज की समस्या होती है तो इसमें काफी मदद करता है।
0: बिल्कुल, जिन लोगों को कब्ज की समस्या है उसका सेवन आप इसका कर लीजिए और बहुत ही आपको कब्ज से राहत मिलेगी। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो कब्ज की समस्या है वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी।
1: बिल्कुल। और ये हमें बहुत ही एनर्जी देती है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं जो कि प्राकृतिक शर्करा यानी जो नेचुरल जो है शुगर होते हैं वो पाए जाते हैं। बिल्कुल। और जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है।
0: बिल्कुल। और ये देखो, ये नुकसानदायक भी नहीं होता क्योंकि ये प्राकृतिक होता है, तो नुकसान की तो कोई बात ही नहीं होती है। और इसमें जो होता है कैल्शियम और बोरॉन जैसे तत्व भी होते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। देखो, जो हड्डियाँ जिनकी कमज़ोर हैं वो अगर खाते हैं तो उनकी हड्डियाँ भी मजबूत बनते हैं। और देखो, जो बच्चे होते हैं ना या जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है कैल्शियम की, तो वो अगर खाते हैं, महिलाएं जो हैं वो डेली खाएं, तो उनकी जो ये हड्डियों की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम होगी, काफ़ी हद तक कम होगी।
1: बिल्कुल। और संगीता जी, हर उम्र के हर वर्ग के लोगों को इसकी आवश्यकता होती है, कि वो चाहे बढ़ते हुए बच्चे हों, चाहे हम महिलाएँ हों या फिर बुजुर्ग हों, ये हड्डियों की समस्या बहुत ही आम हो चली है आज के समय में। क्योंकि भाई हम सभी जानते हैं जो हमारे खान पान का तौर तरीका है, और बच्चे जो जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस की कमी आने लगी है। तो अगर आप ये जो हम मेवों की बात करते हैं जिसमें आज हम किशमिश की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये जो किशमिश है उसका ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद, हम अब जो आपको बात बता रहे हैं हड्डियों के लिए आपको बहुत लाभ देगा।
0: और पता है मंदा की, इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हृदय होता है ना उसके स्वास्थ्य में भी बहुत ही लाभदायक होता है। और जैसे किसी को हृदय की प्रॉब्लम है तो वो अगर लेते हैं तो उनको बहुत ही राहत मिलती है इससे।
1: बिल्कुल। आजकल के जो आप देखिए बुजुर्ग ही नहीं, युवा वर्ग में भी आजकल हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ये अब उम्र नहीं देखता कि किस उम्र में ऐसी समस्याएं हो रही हैं, हार्ट ब्लॉकेज हो या जो है माइनर अटैक हो, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक आम बीमारी सी बनती जा रही है।
0: बिल्कुल मंदाकिनी, देखो आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है उनको हम हार्ट अटैक सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये बड़ी ही समस्या की बात है।
1: बिल्कुल।

0: के कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, जो आपके हार्ट में ब्लॉकेज होता है, ये सब समस्याएं कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी हमारी गलत आदतों से होती है जो हम खा रहे हैं। तो
1: बिल्कुल
0: अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो ये सारी समस्याएं अब हमें कहीं ना कहीं निजात मिलती है इन सब
1: बिल्कुल
0: चीज़ों से। तो किशमिश का प्रयोग अपने हार्ट को, अपने हृदय को खुशनुमा बनाने के लिए ज़रूर
1: और
0: करें।
1: देखो इसमें जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करता है।
0: बिल्कुल, और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो भाई हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत स्ट्रांग करता है। आप जैसे आप इस समय ही ले लीजिए, जो मौसम चल रहा है हमारा, ये चल रहा है बारिश का, इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा आसपास देखने को
1: बिल्कुल
0: मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा जो है इम्यून सिस्टम वो बूस्ट रहेगा तो हम कहीं ना कहीं बचाव कर पाएंगे अपना, क्योंकि जो मौसम है, जो भी हमारा दौर चला, जो भी वायरसेस हैं, इनसे हमें जो है छुटकारा
1: बचने
0: मिल
1: की
0: जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: ज़रूरत है। और इसमें देखो विटामिन भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट त्वचा और बालों के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो है ना बहुत ही योगदान देता है ये, है ना मंदाकिनी। और देखो इसका जैसे हम कैसे इसको खाना है ये हम आपको बता दें कि आपको रोज 10 से 15 किशमिश रात में पानी में भिगो कर रखना है और सुबह इसे अच्छे तरीके से आपको खाना है, अच्छे तरीके से साफ थोड़ा सा कर लीजिए और खा
0: बिल्कुल।
1: लीजिए। उसका पानी भी पीना है, पता है ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
0: और श्रोताओं एक बात का जरूर ध्यान रखिए, जो डायबिटिक होते हैं, जो जिनको शुगर की बीमारी है, तो वो कहीं ना कहीं इसके सेवन से थोड़ा सा बचना चाहिए इस, और क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो पेट फूलना या दस्त जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
1: बिल्कुल
0: तो संगीता जी, अब हमारे कार्यक्रम का वक्त हो चला है, और अपने श्रोताओं से हमेशा हम कहते हैं कि आप अपने मैसेजेस, अपने जो है जो
1: प्रतिक्रिया
0: मेल
1: है।
0: है, हाँ, ये हमें भेजते रहिए, क्योंकि उसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और इसके लिए चाहिए आपको हमारा ईमेल एड्रेस, तो नोट कीजिए, grihlakshmibalsangh123@gmail.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कीजिए, 8004926250।
1: और अब इसी के साथ लेते हैं विदा।
0: नमस्कार।
2: बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस, स्टेलमेट कंटिन्यूज इन पार्लियामेंट ओवर नीट पेपर लीक केस एज ऑपोजिशन डिस्टर्ब्स द प्रोसीडिंग्स डिस्पाइट गवर्नमेंट एग्रीइंग फॉर डिस्कशन। Indian Navy inducts INS Malvan, second anti-submarine warfare ship to strengthen maritime security. Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific, hold meeting at Manila in Philippines. Death toll rises to 31 as flood situation remains grim in Assam. Red alert for heavy rainfall in Gujarat, central Maharashtra and parts of Goa for the next 2 days. An Indian shuttler Ayush Shetty enters pre-quarterfinals, defeating Indonesia's Alvi Farhan in China Open Badminton Tournament. Both Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on their feet protesting on the paper leak issue. Speaker Om Birla urged the opposition to cooperate for smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. Mr. Rijiju emphasized that the government wants a meaningful and constructive discussion involving all sides, keeping in mind the future of the youth of the country.
4: Sarkar, NEET paper leak.
5: The government is fully prepared to discuss the NEET paper leak issue. I request that the Honorable Speaker discuss with the floor leaders of all parties and decide when the discussion should take place, how long it should continue and under which rule it should be conducted. The government is completely ready to discuss the NEET paper leak issue.
4: Paper leak pe charcha karne ka tayar hai.
3: The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. When the House rejoined after the first adjournment at 12 noon, the opposition again started sloganeering over the NEET issue. Deputy Chairman Harivansh tried to

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार की।

0: किया। उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से, वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते।
1: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
2: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
1: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
3: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
1: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि

0: राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
2: In this era of volatility and disruption,
3: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
4: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000

0: हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
1: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी

0: की संस्कृति से जुड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
1: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
1: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
0: जी,
1: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
0: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
1: जी,
0: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
1: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
0: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में, विशेषकर सर के आभूषणों में, हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
1: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं,
0: जी
1: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
0: जी
1: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है जिसे मोरुंग कहते हैं।
0: जी,
1: ये मोरुंग होता क्या है?
0: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
1: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहां जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
0: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
1: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
0: जी,
1: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
0: जी,
1: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
0: जी,
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ceet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
0: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था। क्योंकि उसे सुंदर

0: सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
1: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
2: जी मालिक, ये बात तो है।
1: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
2: जी मालिक, कोशिश करता हूं। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
1: अच्छा,
2: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 शेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
1: भाई इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
2: जी मालिक।
0: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
2: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
1: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा। तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
0: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहां जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
2: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूं तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
1: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 शेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 शेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
2: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 शेर दूध दोहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा।
1: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
2: जी सेठ जी।
0: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
1: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
2: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
1: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
0: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहां क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा से

0: सुंदरिया तुम मेरी प्यारी सुंदरिया।
1: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
0: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
0: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं उनका क्या होगा?
0: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
1: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
0: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
1: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
0: जी सेठ जी।
2: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
0: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
5: यूजीन लगभग

0: और 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलोंग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
1: यहीं कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ वो रही।
0: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
2: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
0: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
2: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
1: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
0: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
2: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है। अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
0: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
1: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
1: मेरा नाम यूजीन है। मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
1: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
1: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
1: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे पिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
1: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ। मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
1: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
1: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे। आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
1: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा। अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।

0: हाँ हाँ अभी लाता है, बस एक मिनट।
1: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
2: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्विन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो। तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
0: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है। अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश, वापस चलो।
4: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ।
3: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है। सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
4: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
3: हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई। मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
4: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
3: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
4: क्या?
3: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
4: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं ऐसे ही खरीदूंगा।
3: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा। तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
4: मुझे यही चाहिए।
3: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो। शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
4: नहीं।
3: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
4: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा। चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
3: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
4: यूं ही?
3: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
4: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
3: अच्छा, समझी। स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश।
4: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
3: पर बेटा ये तो
4: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
3: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
4: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए। और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त। तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
3: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?

0: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
1: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
2: अरे बेटा, ये
0: तुम्हारा? जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
2: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
0: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
2: बेटा।
0: इसलिए मुझे लगता है कि ये पापी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। विविध भारती पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा, सुनते रहिए विविध भारती।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चिराग का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

आइए सुनते हैं फिल्म आक्रमण का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म आक्रमण के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। घड़ी के बज चुके हैं 5:15 और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। और मैं हूं आज आपके साथ आपका रेडियो होस्ट एंड दोस्त अभिषेक।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त उन्नति। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम में। आइए लेकर चलते हैं आपको मौसम, बारिश से होते हुए जो स्वास्थ्य जीवन शैली है उनकी ओर,
0: और साथ ही एक ऐसे विषय की ओर जिसके बारे में अवेयर होना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि साथियों, हम सभी जानते हैं कि सावन की फुहारें जहां मौसम को खुशनुमा बनाती हैं, वहीं अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आती हैं।
0: हाँ बिल्कुल, बरसात के मौसम में जगह जगह पानी भरने से बैक्टीरिया, वायरस और मच्छरों का प्रकोप भी काफ़ी बढ़ जाता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, हैजा और वायरल बुखार जैसी बीमारियों का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है।
1: ऐसे समय में हमारे लिए साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, संतुलित आहार और समय पर इलाज बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे हाउस होल्ड्स ऐसे भी हैं जो बीमारी से ज़्यादा इलाज के खर्च से डर जाते हैं।
0: और यहीं पर एक ऐसी सरकारी पहल उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध कराती है, और वो किरण है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में जानेंगे कि ये योजना क्या है, इसकी शुरुआत क्यों और कब हुई, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है और कैसे ये योजना लाखों परिवारों के जीवन में स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच बन रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते चल रहे हैं अपने प्रोग्राम का पहला गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है, लेकिन जब किसी परिवार में कोई गंभीर बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले इलाज की चिंता नहीं बल्कि उन्नति इलाज के खर्च की चिंता सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हो जाती है।
1: बिल्कुल अभिषेक, कई बार एक बीमारी पूरे परिवार की वर्षों की जमा पूंजी को भी खत्म कर देती है। ऐसे ही हाउस होल्ड्स को सुरक्षा देने और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की।
0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम शॉर्ट में PMJAY के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में गिना जाता है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी किसी भी परिवार के इलाज में बाधा बिल्कुल ना बने। यानी अब गंभीर बीमारी का मतलब हमेशा आर्थिक संकट नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल, इस योजना के तहत एलिजिबल फैमिलीज को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर मिलता है। ये राशि पूरे परिवार के लिए होती है और इसका उपयोग जो लिस्टेड सरकारी या निजी अस्पतालों में इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन श्रोताओं के मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है।
0: बिल्कुल, ये योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर और पात्र परिवारों के लिए होती है। पात्रता निर्धारित सरकारी मानकों के आधार पर तय की जाती है। यदि आपका नाम पात्र सूची में है तो आप आयुष्मान कार्ड बनवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
1: और सबसे अच्छी बात ये है कि परिवार के सदस्यों की संख्या या उम्र को लेकर कोई अलग सीमा नहीं रखी गई है। पात्र परिवार

0: परिवार का हर सदस्य इस सुरक्षा का लाभ उठा सकता है। और कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि शायद इस योजना में केवल सामान्य इलाज होता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है।
1: बिल्कुल, इसमें हृदय रोग, कैंसर, किडनी रोग, न्यूरोसर्जरी, बोन्स रिलेटेड ऑपरेशंस, न्यूली बॉर्न बेबीज़ को ट्रीटमेंट और अनेक ऐसी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा शामिल है। और साथ ही आवश्यक चेकअप्स और अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद की निर्धारित मेडिकल सर्विसेज भी इसी के दायरे में आती हैं। यानी ये केवल एक कार्ड नहीं होती, बल्कि ज़रूरत के समय किसी भी परिवार के लिए एक मजबूत सहारा भी है।
0: बिल्कुल। अब बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की। यदि कोई पात्र है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे सबसे पहले अपनी पात्रता की जांच करवानी चाहिए। इसके बाद नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर जाकर अधिकृत अस्पताल या आयुष्मान सहायता केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। कोई कार्ड बनने के बाद जो सूचीबद्ध अस्पताल होते हैं यानी जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
1: यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने राज्य से बाहर भी हो और वहाँ सूचीबद्ध अस्पताल मौजूद हो तो भी ट्रीटमेंट संभव हो सकेगा, और यही इस योजना की एक बड़ी विशेषता भी है।
0: बिल्कुल। आयुष्मान भारत मिशन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है जिसके बारे में हम सब को जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इसके अंतर्गत देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डेवलप किए गए हैं। यहाँ लोगों को आर्थिक स्वास्थ्य सेवाएं, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग, मातृ और शिशु समस्याएं सेवाएं और वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।
1: यानी गवर्नमेंट केवल बीमारियों का इलाज ही नहीं कर रही है, बल्कि बीमारी से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली पर भी बराबर ध्यान दे रही है। हम सभी युवा साथियों की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हो सकता है कि हमारे आसपास, गांव मोहल्ले या पड़ोस में कोई ऐसा परिवार हो जिसे इस योजना की जानकारी ही ना हो, तो ऐसे परिवारों तक ये अवेयरनेस पहुँचाना हमारा दायित्व होना चाहिए।
0: और साथ ही उनकी पात्रता की जांच कराने और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी जागरूकता किसी परिवार को लाखों रुपए के इलाज का सहारा दे सकती है।
1: और साथ ही ये बात भी ध्यान रखने की है कि एक जागरूक नागरिक केवल अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रखता, बल्कि वो दूसरों को भी जागरूक बनाता है। और स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत समाज और विकसित राष्ट्र की पहचान होते हैं। उन्नति,
0: बिल्कुल।
1: मुझे लगता है कि ये जो हमारा आज का विषय था चर्चा का, हमारे श्रोता साथियों को काफ़ी पसंद आया होगा और इससे नया कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा होगा, और अपने स्वास्थ्य के प्रति, दूसरों के स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार और पड़ोसियों के स्वास्थ्य के प्रति जरूर जागरूक होंगे। और इसी के साथ अपने श्रोता साथियों को सुनवाते चलते हैं अपने प्रोग्राम का एक और गीत।

0: अब दोस्तों, अगले सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, और वार्ताकार है रिया मालविया। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: वो शमा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बा जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए, रखते हैं हम वो हौसला जो मर मिटे हिंदुस्तान के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। उन्होंने कहा था, अगर आपके लहू में रोष नहीं तो यह पानी है जो बह रहा है। ऐसी जवानी का क्या काम जो मातृभूमि के काम ना आए। ऐसे वीर सेनानी का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को भावरा गांव में हुआ। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माताजी का नाम जगरानी देवी था। इनका प्रारंभिक जीवन आदिवासी बहुल क्षेत्र में भावरा गांव में बीता। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी सन 1956 में अकाल के समय पृथक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भौरा गांव में बस गए, जहां बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। बचपन से ही आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इसी कारण उन बचपन से ही वह निशानेबाजी में निपुण हो गए। बालक चंद्रशेखर का मन अब देश को आजाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया था। वो मनमाड गुप्त और प्रणवेश चैटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का ये दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। सन 1919 में हुए अमृतसर जलियांवाला बाग नरसंहार में देश के नव युवकों को उत्प्लुत कर दिया। आजाद उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया, तो वो आज ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों के साथ चंद्रशेखर भी सड़क पर उतर आए और अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वो पहली बार गिरफ्तार भी हुए और उनको वेतनों की सजा हुई, 15 वेतन की सजा हुई। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदा तोड़ने वाले एक

0: छोटे लड़के की कहानी के रूप में किया था। ऐसे ही कानून तोड़ने के लिए एक छोटे लड़के को 15-16 साल की उम्र में सजा मिली। जो अपने को आजाद कहता था, उसे बेंत की तख्ती से बांध दिया गया। जैसे जैसे उस पर बेंत बरसते गए, वो भारत माता की जय चिल्लाता रहा। हर बेंत पर वो यही नारा लगाता रहा, जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। बाद में यही लड़का उत्तर भारत के क्रांतियों के दल का एक नेता बना। गांधी जी ने सन 1922 फरवरी में चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया। तब आजाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल ने सन 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ के संगठन किया। आजाद इसमें शामिल हुए। इस संघ ने कई घटनाओं को अंजाम दिया। इस संघ की नीतियों के अनुसार 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया और फरार हो गए। 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी से कड़ी सजा हुई। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र किया और 8 सितंबर सन 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में गुप्त सभा का आयोजन किया। इसमें भगत सिंह को प्रचार प्रमुख बनाया गया। पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया और आजाद ने सेना प्रमुख का दायित्व संभाला। इस दल के गठन के बाद एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया और हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी, और ये फैसला था जीत या मौत। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन के बाद उन्होंने भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स की हत्या करके लिया और दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। HSRA द्वारा किए गए सॉन्डर्स वध और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सजा पाए 3 अभियुक्तों, जिनमें भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने अपील करने से मना कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्युदंड पाए इन तीनों क्रांतिकारियों की सजा कम कराने की काफी कोशिश की। वो उत्तर भारत के हरदोई जेल जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से भी मिले। उनसे परामर्श कर वो इलाहाबाद गए और नेहरू जी से मिलने उनके निवास आनंद भवन में भी बैठक की। आजाद ने पंडित नेहरू से आग्रह किया कि वो गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने को जोर डाले। नेहरू जी ने आजाद की बात नहीं मानी। अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी CID का SSP नॉट बाबर जीप से वहां पहुंचा और उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी में आजाद को वीरगति प्राप्त हुई। ये दुखद घटना 27 फरवरी सन 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई।
1: तो श्रोता साथियों, अभी आपने सुना एक वार्ता जिसका विषय था अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, और वार्ताकार थी रिया मालवी। उम्मीद है चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन से जुड़ी ये वार्ता आपको ज़रूर प्रेरित की होगी और कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। आइए उन्नति अपने श्रोताओं को प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले, वैसे भी अभी हमारे पास बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर से एक बार जोड़ते हैं संगीत के साथ और सुनवाते चलते हैं ये गीत।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी। नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आपको बताई गई तमाम जानकारियाँ और गीत संगीत पसंद आ रहे होंगे। और उन्नति, हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको हमारी बातें, हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं, तो अपने प्रीशियस फीडबैक भी दे सकते हैं हमारी मेल आईडी पर, जो कि है yuvvanilld@gmail.com। इसी के साथ साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है प्रेरणा पुंज। और हमारे आज के प्रेरणा पुंज हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। जैसा कि रिया मालवी जी ने अपनी बातचीत में, वार्ता में बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन से जुड़ी बताई, जो कि वाकई में हमें बहुत प्रेरित करती हैं, मजबूत बनाती हैं, और जिनका नाम सुनते ही साहस, स्वाभिमान, आत्मबल और देश प्रेम की भावना जाग उठती है। हम बात कर रहे हैं अमर क्रांतिकारी, जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी की। उनका जीवन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने का संदेश देता है।
1: बिल्कुल। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के भावरा गांव में हुआ था। बचपन से ही वो साहसी, निडर और आत्मविश्वासी थे। उन्हें धनुष बाण चलाना और शारीरिक अभ्यास का विशेष शौक था। उनकी माता चाहती थी कि उनका बेटा एक ऐसा व्यक्ति बने जो सदैव सत्य और साहस के मार्ग पर चले, और यही संस्कार आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बने।
0: डियर लिसनर्स, जब वे किशोर अवस्था में थे, तभी देश में स्वतंत्रता की भावना तेजी से फैल रही थी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर चंद्रशेखर जी भी उसमें शामिल हुए, और जब उन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तब उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेलखाना बताया था। उनके इस निर्भीक उत्तर ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसी दिन से वे पूरे देश में चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
1: मित्रों, असहयोग आंदोलन के बाद उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कार्य करना शुरू किया, अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर, और अपना योगदान दिया। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। फिर उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने, युवाओं को प्रेरित करने और उनमें अनुशासन और साहस की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व और संगठन क्षमता के कारण अनेक युवा राष्ट्र सेवा के लिए आगे बढ़े।
0: दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। वो इन युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और स्वतंत्रता के उद्देश्य के प्रति समर्पित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका विश्वास था कि देश के लिए कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन, साहस और ईमानदारी का पालन करे।
1: बिल्कुल। उनके जीवन का सबसे प्रेरणादायक पक्ष उनका अटूट आत्मविश्वास था। उन्होंने संकल्प लिया था कि वो जीवन भर आज़ाद रहेंगे, और अपने इस संकल्प को अंत तक निभाया। उनका ये आत्मविश्वास हमें सिखाता है कि यदि हम अपने सिद्धांतों पर दृढ़ है, तो कोई भी चुनौती हमें अपने लक्ष्य पर विचलित नहीं कर सकती। आज के विद्यार्थियों के लिए भी ये संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी हों, अपने लक्ष्य और मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए।
0: और साथ ही आज के समय में यदि हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन को देखें, तो पाएंगे कि उनकी प्रेरणा केवल देशभक्ति तक ही सीमित नहीं है। उनका जीवन हमें अनुशासन, समय का सदुपयोग, आत्मविश्वास, नेतृत्व और जिम्मेदारी जैसे गुण भी सिखाता है। यदि कोई स्टूडेंट नियमित रूप से पढ़ाई करता है, कोई खिलाड़ी पूरी लगन से अभ्यास करता है, या कोई युवा समाज के लिए सकारात्मक कार्य करता है, तो वो भी उसी समर्पण की भावना को आगे बढ़ा रहा होता है, जिसकी मिसाल चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रस्तुत की थी।
1: 27 फरवरी 1937 को प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क, जिसे आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, में उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने संकल्प को अंत तक निभाया और अपने जीवन को राष्ट्र के आदर्शों के प्रति समर्पित कर दिया। उनके साहस, आत्मसम्मान और अटूट निष्पक्षता ने उन्हें भारतीय इतिहास के अमर नायकों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। आज भी देश भर में उनके जीवन को श्रद्धा और गर्व के साथ याद किया जाता है।
0: तो दोस्तों, आइए हम सब अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के साहस और आत्मसम्मान, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम से प्रेरणा लें, और अपने जीवन में सत्यनिष्ठा कर

0: दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपसे एक सवाल पूछते हैं हमारे Q&A सेशन में,
1: बिल्कुल
0: तो उसी क्रम में हमारा कल का जो सवाल था वो था, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जीव कौन सा था? और इसका सही उत्तर है लाइका।
1: और साथियों, अब बात करते हैं हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, आदित्य L1 मिशन किस सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है? आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं और अपना आंसर हमें कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर, जो कि है yuvvaniald@gmail.com। और साथ ही आप हमें अपना मैसेज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 800-4926-2500। तो उन्नति क्यों न चलते चलते अपने श्रोता साथियों को सुनवाते चलें एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: तो उन्नति, उम्मीद है अपने श्रोता साथियों को आज का ये अंक, ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और आज की तरह हम कल भी मिलेंगे अपना अपने श्रोता साथियों से और करेंगे ढेर सारी बातें, है ना। और तब तक
1: मुझे यानी उन्नति
0: और मुझे यानी अभिषेक को दीजिए इजाजत। हम आपसे मिलेंगे कल और करेंगे ढेर सारी बातें। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं।

0: थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: साथ में जागृति शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई, तब भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा स्थिति के कारण झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है। इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की गई थी। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुरुआती खबरों के अनुसार सुरंग में 25 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज महिला सिंगल्स मुकाबले में

0: सिंधु ने हम वतन उन्नति हुड्डा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं क्रम। संसद समीक्षा होगी रात 8 बजे। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम होगा रात 9:30 बजे। रात 8:15 बजे पूरी उड़ीसा में आयोजित

संसद समीक्षा होगी रात 8 बजे। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम होगा रात 9:30 बजे। रात 8:15 बजे पूरी उड़ीसा में आयोजित होने वाले भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर आधारित कर्टन रेजर कार्यक्रम होगा और सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम होगा, इसमें ग्रामीण भाई सुनेंगे सतीश शुक्ला से नीति वचन और डॉक्टर दीनानाथ सिंह से की गई बातचीत मछलियों के लिए पौष्टिक आहार। शाम 7:31 पर अजीम शायर मिर्जा गालिब पर आधारित कार्यक्रम किस्सा गोई का प्रसारण होगा, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4 बजे। रात 8 बजे संसद समीक्षा होगी। रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनिएगा और सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे जीपीएन सिंह से की गई बातचीत पंपिंग सेट की देखभाल। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर अंबुज त्रिपाठी की वार्ता सुनवाई जाएगी, बच्चों में डायरिया कारण लक्षण और उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अमीर खां का ख्याल गायन 7:30 पर, पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन आप सुनेंगे 12:45 बजे और संगीता शंकर का वायलिन वादन रात 10:30 बजे होगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिव्या श्रीवास्तव के गाए गीत सुनिए 9:50 पर, अंकिता चतुर्वेदी के गाए भजन गीत 7:45 पर प्रसारित होंगे। लोगी सुनिए अरविंद कुमार यादव और साथियों से सूरज सोनकर से और चंद्र प्रकाश पाठक से 10:30 बजे। नमस्कार प्रयागराज का विषय होगा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 8:45 पर। NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे दिन में 2:30 बजे। अजीम शायर मिर्जा गालिब पर आधारित कार्यक्रम किस्सा गोई का पुनः प्रसारण होगा दिन में 11:30 बजे, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी सुमन दुबे से प्रतिमा मिश्रा की बातचीत महिला स्वास्थ्य समस्याएं और 5:15 बजे युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवाणी, इसमें श्रोता सुनेंगे कहानी और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर विशेष साक्षात्कार के अंतर्गत प्रसारण पत्रकारिता और युवाओं की जिम्मेदारी, इस विषय पर डॉक्टर धनंजय चोपड़ा से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे मेरी खेती मेरी बात के अंतर्गत पन्ना लाल से की गई बातचीत। 7:31 पर काव्य कौमुदी कार्यक्रम में बीना मिश्रा से काव्य पाठ सुनिएगा। रात 9:30 बजे गजलों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे देशगान संवेद स्वरों में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय सर्वकारः संसदि नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये सारगर्भां चर्चां विधातुम् अंगीकृतवान्। तथापि विपक्षस्य श्रान्तं कोलाहलेन प्रावृत सत्रस्य तृतीयेपि दिने उभयोः सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम्। सोमवासरे संसद भवनं प्रति आन्दोलनं कुर्वत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिक बलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे देहली उच्चन्यायालयः केन्द्र सर्वकारात् देहली आरक्षक विभागाच स्पष्टीकरणं आहूतवान्। फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे समायोजिते क्वाड मञ्चस्य वैदेशिक मन्त्रिणाम् उपवेशने मन्त्रिभिः मुक्त उन्मुक्त समावेशी हिन्द प्रशान्त क्षेत्राय स्वकीया प्रतिबद्धता पुनरावर्तिता। असमराज्ये भीषण जलप्लावेन स्थितिः अद्यापि अत्यन्तं गभीरा वर्तते, यत्र जलौघे मृतकानां आहत्य संख्या संवर्ध्य 31 सम्प्राप्ता। अपि च चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायाम् अद्यापराह्णे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां पराजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणम् अथ च छात्राणां विरोध प्रदर्शनं समेत्य विभिन्न प्रकरणेषु विपक्षिणां तृतीय दिवसेपि सदस्यानां अविरत कोलाहलत्वेन संसदः उभय सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम्। अपराह्णे द्विवादने द्वितीय स्थगनात् परं यदा लोकसभायाः कार्याचरणं पुनरारब्धं तदा विक्षेपेण नीट प्रकरणमधिकृत्य उच्चैः कोलाहलो विहितः। अत्रांतरे सदनेन तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदः कल्याण बैनर्जी इत्यस्य वर्षाकालीन सत्रस्य शेषावधेः निलंबन प्रस्तावोपि पारितः। पीठासीनः कृष्णा प्रसाद टेनेटी न्यगादीत् यत् कल्याण बैनर्जी इत्यसौ महिला सांसदानां विरुद्धं आपत्तियुक्ताम् असंसदीय टिप्पणीं विहितवान्। घटनेयम् आपत्तियुक्ता सदनस्य मर्यादायाः विरुद्धा च इत्यपि सः प्रावोचत्। संसदीय कार्य राज्यमन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन एषः प्रस्तावः उपस्थापितः, यश्च ध्वनिमतेन पारितः। निरन्तरकोलाहलेन पीठासीनाधिकारिणा लोकसभायाः कार्याचरणम् आगामिदिनं यावत् अपवारितम्। राज्यसभायामपि एतादृशः एव दृश्यः दृष्टिम् अगात्। अपराह्णे त्रिवादने तृतीय स्थगनात् परं यदा उच्चसदनं समवेतं तदा विपक्षिदलानि नीटविषये अन्यप्रकरणेषु च विरोधं प्रादर्शयन्। उपसभापतिः हरिवंशः अवदत् यत् सर्वकारः नीटविषये चर्चायै सज्जः अस्ति, विपक्षेण च सदनसञ्चालने सहयोगः करणीयः। उच्चसदने भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः कांग्रेसदलेन नवीनान् पक्षाश्रयानारोप्य सदने चर्चायां विघ्नोत्पादनाय प्रत्याक्षिपत। अविरतकोलाहलस्य मध्ये उपसभापतिना राज्यसभायाः कार्याचरणमपि आगामिदिनं यावत् स्थगितम्। इतः प्राक् संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजु उदघोषयत् यत् सर्वकारः नीट प्रश्नपत्र गोप्यताभंग विषये सर्वविधां विचार विनिमयं कर्तुं पूर्णतया सन्नद्धो वर्तते। राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय रिजिजु वर्यः सबलम् आग्रहम् अकरोत् यत् सर्वकारः सर्वानपि पक्षान् समेत्य एकां उच्चस्तरीय चर्चाम् इच्छति।
1: सरकार नी पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालयः सोमवासरे संसद भवनं प्रति गच्छत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिक बलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे केन्द्रीय सर्वकारात् दिल्ली आरक्षक विभागाच्च प्रत्युत्तरं याचितवान्। मुख्य न्यायाधीशस्य डीके उपाध्यायस्य च तथा न्यायाधीशस्य तेजस कारिया महोदयस्य न्यायपीठेन आरक्षक कार्याचरणात् सम्बद्धानि सर्वाणि प्रपत्राणि सीसीटीवी चित्राणि च सुरक्षितानि स्थापयितुं निर्देशो प्रख्यापितः। अस्य प्रकरणस्य अग्रिमं श्रवणम् अस्मिन्नेव वर्षे सितंबर मासस्य 11 दिनाङ्के भविता। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य फिलीपींस

0: राम राम।
1: आहो घनश्याम भैया, का हाल चाल बा खेती किसानी के भैया?
0: ये बैजू भैया, ये समय तक खेती किसानी जोरान बा। भैया हो देखा धाने का रोपाई उपाई करके हो गईली खाली।
1: भैया हो कहावत भी बना, तेरा कार्तिक तीन अषाढ़, अषाढ़ में बड़ा कम समय मिला था भैया, अगर धाने के रोपाई कर लिया तो बड़ी बात है जीवन।
0: बिल्कुल बिल्कुल बैजू भैया,
1: कही मार तो कुछ किसान भाई के अभी पूरा नहीं लगा बा, तो जल्दी करें भैया लगाए ले हो।
0: चुके के भैया जरूरत नहीं हो, और आवत रहे भैया पंचायती में तो अभी रोपाई कहीं कहीं शुरू बाय, कहीं कहीं तैयारियों पे बाय।
1: देर से बेहन डाले है ना, पानी के भी दिक्कत रहा था, और दूसरी चीज भाई प्रजात भी सबके अलग अलग धान कर लेती अपने अपने जगह पे, तो उनका भाई अपने समय से लगावत ही जीवन बाटे है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल भैया हो, बैजू अब तो देखा थोड़ा बहुत दौर राजा भी फुहारा मार देते हैं।
1: हाँ बीच बीच में जीवन हाँ, कुछ सहयोग मिल जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हो, अब तो ऐसे सहयोग भैया ही बाकी, या तो लेव लगल बा, और नहीं तो भैया माटी ने पानी सोख के खाली हो गया ला, अगर आप पंपसेट से ट्यूबवेल से थोड़को पानी हाँक दे
1: हाँ, हाँ,
0: तब भैया लेव लग जाता। हाँ लगाव लायक हो जाता है।
1: तो भैया हो हम तो कही ना कि जे भी धान लगाए बाटे ना अपन मेड़ डाँड दुरुस्त कहे रहा है, पानी बहाई ना पानी के जरूरत बा, हो कही जाते ना धान पान केरा ही पानी के चेरा।
0: बिल्कुल
1: तो भाई पानी की जरूरत रहा तो का भी देखभाल करत रहा है, हमें का कहा थी भाई अगर घास ज्यादा हो तो हो खरपतवार तो कर दवाई आवत थी पहले डाले के वो भी डाल दें अपन।
0: बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ भैया, कहे से अगर चुक जाइबा तो बड़ा पछताई के पड़ी।
1: कही गया हाँ। भैया हो और भी बधाई, खेती अगर की है बाटिन किसान भाई तो कर भी देखभाल करें, खास करके साग सब्जी में देखा है बरसात में ना साग सब्जियन का दाम अच्छा मिलत है, अगर उपज हो जाता है तो जवन भी खेती की वही साग सब्जियन को कर देखभाल उचित जरूरी
0: हो। बिल्कुल हो, नया पौध अगर लगो ले हुआ भैया तो वहू को ध्यान दे, और साथ ही साथ देखा पानी का ना भैया, अगर पेड़ बहुत गजिन बा है अब तो पानी जब भैया टिकत है ना तो ओकर दबाव बनत है।
1: अच्छा अच्छा भैया,
0: तो भैया तनी छांट वोट दे ओके, कहे से के हो देखा टहनी पर डाली पर ज्यादा दबाव न बने, हवा वा का भी समय हो समय होला।
1: सही तो कहे भैया, हवा का मतलब भाई के पानी बरसा बा, और जमीन जो गीली बाटे है तो हवा चला तो जल्दी गिरे के डर रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो भैया नया पौधा हो तो ओके, नया पेड़ हो ओके, अब पुरान पेड़ हो भैया तो सबकर देख रेख करें सजगता के साथ।
1: अब भैया वो पेड़ हैं बाग बगीचा वाले पेड़ हैं, अगर देखें कि भाई गिरे लाए बात तो और माटी वगैरह भाई लगाई दे, छोप दे जोन बाटे।
0: हाँ छोप दे हो, और देखा जोन की तब पेड़ पालों का खेती किसानी का बात हो गई बैजू भैया, और दूसरा देखा बारिश में हो ना अगर साफ सफाई अगल बगल नहीं रहते तो बड़ा कुल किचिर पिचिर बजबज बजबज हो लगत है, तमाम तरह का भैया कीड़ा किरौना भैया उसे पैदा होके आज बड़ा बेरामी लिया देते
1: काहे न, खास करके मच्छर भैया जोन बाटे अलग ही परेशान कर थी ना। अब भैया हो देखे में आवत तमाम तरह के और जीव जंतु जोन बाटे आए जाते हैं, विषैला जोन जानवर हैं तो उसे भी बचे के जरूरत बा है। हाँ। एक बात भैया हो, रोग बेरामी के बात होत बा है तो देखा हो तमाम तरह के रोग बेरामी अपने सब के कुछ न कुछ भाई लोगन को होत रहा था, खास करके अगर दिमागी कोनो दिक्कत आएगी भैया तो बड़ी परेशानी होती
0: है। हो दिमाग का बात की है ना, तो भैया देखा आज विश्व मस्तिष्क दिवस भी मनावल जाता
1: है। हाँ भैया यही भैया को देखा हो दिमाग सब कुछ किसान भाई के हमारे सबके जोन बा है भाई, देखा बहुत बाटी सबको हिष्ट पुष्ट बाटी, बोल दिमाग नहीं कम करत बाटे है तो कैसे कौन काम हो।
0: कहल जाते भैया ना कि पूरा शरीर का संचालन अपने मस्तिष्क से होला।
1: हाँ तो यही सब को देखते हो भैया हो, जागरूक रहे खातिर कि दिमाग से हर जगह से आपका शरीर स्वस्थ रहा अपन जोन बाटे है ना। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी जोन बाटे है ये विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई के मनावा था,
0: बिल्कुल,
1: तो पूरी
0: बिल्कुल।
1: दुनिया में ये मनावा जाता है जागरूक करे खातिर।
0: बिल्कुल
1: भैया हो एक लिए जरूरी बा कि

0: अपने मस्तिष्क अच्छा रखे बड़े भैया, खान पान पहली बात अच्छा रहा है, एकरे लिए ना खाए कि खाली जीभी के स्वादे बड़े।
1: नहीं नहीं भाई, हो देखा पौष्टिक आहार ले,
0: पौष्टिक
1: दूसरा
0: आहार
1: भैया
0: ले।
1: योग व्यायाम,
0: हाँ हाँ
1: आ देखा मस्तिष्क के ना बहुत बढ़िया रखे का तौर तरीका बा भैया, अच्छे विचार रखा, अच्छा सोच रखा,
0: हाँ
1: अच्छा संगत रखा,
0: अच्छा संगत
1: नीक
0: रखा।
1: नीक
0: हाँ
1: भैया किताब पढ़ा, कहानी पढ़ा। और भैया हो देखा एक एक चीज हो कि बजू भैया जब नान नान रहल जाए तो हो बब्बा दादा नाना नानी के पास जाए जाए तो बुझौल हो।
0: हाँ, तमाम तरह किस्सा कहानी
1: हाँ,
0: होत
1: तो भैया
0: रहा।
1: हो बुझौल हो तो समय ना कटे, वो भैया हो दिमाग का प्रयोग हो, दिमाग पर जोर लगे, तो ऐसे भी मस्तिष्क अपन सक्रिय
0: और
1: रहे।
0: सबसे बड़ी चीज है भैया हो, नींद बढ़िया लेके चाहे,
1: हाँ
0: अगर
1: बिल्कुल
0: सही से नींद आवत ना है तो दिमाग कम सक्रिय रहे भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो ये तरह के आ देखा एक चीज भैया हो कि अगर कोनो नशा पत्ती का आदत बा, एके छोड़ दा भाई, तो दिमाग पे असर करेला। धुआं वाला अगर नशा करते हैं वो दिमाग पे असर करेला।
0: भाई
1: हाँ
0: सब चीज भाई, तनाव सबसे बड़ी चीज। हाँ,
1: सबसे बड़ी
0: तनाव
1: भैया
0: तो कौनो चीज के चिंता ना करे कि चाहे, कहते ना चिंता चिता के समान बाहर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आ देखा एक चीज हम कही हो कि जितना जीवन शकिल सके भाई उतने
0: हाँ
1: बढ़िया से जिए, बेवजह का कल्पना न करे, बेवजह का ख्वाब न देखे। हम कही भैया हो दूसरे के देख के परेशान हो गया तो तुम्हार दिमाग, तुम्हार शरीर, तुम्हार मस्तिष्क दिक्कत में आई, तमाम
0: सही
1: तरह के
0: कह।
1: बीमारी
0: तो
1: आई।
0: भैया हो, ये सब जागरूक करे खातिर विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई के मनावत जाता। किसान भाई यहाँ पे सोचें विचार करें। अब देखा हो, आज पंचायती में काका लेके आई है।
1: भैया देखा पंचायत आज भी हमारे रोज की तरह भरल पूरल हो। आज देखा नीति वचन का दिन हो तो
0: हाँ
1: सतीश शुक्ला भैया से सुनल जाए।
0: हाँ हाँ
1: आ एक चीज भैया देखा, किसान भाई खेती किसानी के अलावा भी तमाम रोजी रोजगार करते हैं,
0: हाँ हाँ
1: तो भैया जे मत्स्य पालक भाई हैं वो मछलियन के पौष्टिक आहार के बारे में भी भैया डॉक्टर दीनानाथ सिंह से जानल जाए। लेकिन देखा थे तोरे बगले में भैया कमला प्रसाद पाल, उनका संघातिन ढोलक मजीरा लेके बैठे हुआ।
0: तो भैया हो, गौ नई किसान भाई इनको सुनवाई दिया
1: बिल्कुल
0: जाए।
1: बिल्कुल, तो सुनाए थे विकास के।
0: सुने भैया।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ
1: भाई
0: घनश्याम भैया, कहीं देखा गौ नहीं होएगी कमला प्रसाद पालुम के संग हातिन के। अब देखा नीत के बात होत रही कि आज का कहते नीत बचन के दिन है जोन बाटे बुधवार है।
1: बिल्कुल
0: अब भैया हो देखा नीत में कुछ ऐसे ऐसन बात होती जेका अमल करा ना तब जीवन धन्य हो जात भैया, समाज में समरसता आवत है।
1: हाँ बिल्कुल
0: हाँ अब दिमाग के बात होत रही तो मन शांत रहत है। तो आज देखा नीत बचन में सतीश शुक्ल का कुछ लेके आए बाटे न किसान भाई, एक सुने।
1: बिल्कुल सुनवा दा।
2: स्वामिन त्वदीयौ चरणाब्ज केसरौ सुशोभितौ रक्तनखावली कुलै मुहुर्मुहुर्योगिकरा विलालितौ पुनः पुनः काङ्क्षति मन्मधुव्रत नमः परमहंसास्वादित

आनंदाय, भक्त जन मानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। सादर नमस्कार। नीति वचन के एक सुंदर से प्रोग्राम में हम सब मनुष्य इस संसार में किस भांति से विचरण कर रहा है, इसी विषय पर आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। गृह कारज नाना जंजाला। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर की संपूर्ण सत्ता में मनुष्य तीन तापों से प्रभावित होकर, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों से प्रभावित होकर अपने घर परिवार रूपी कुंड में देह रूपी आहुति दे रहा है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव किसी भी जाति, किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय या किसी भी प्रकार का जीव मकड़ी की तरह अपना जाल बिछाता है और उसी में फंसता चला जाता है। वेदों में कहा गया है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। प्रत्येक जीव मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला हो या किसी भी योनि में जन्म लेने वाला मनुष्य हो, जन्म लेने के बाद वह पृथ्वी पर विचरण करना जब शुरू करता है, तब से लेकर वृद्धावस्था तक मानव अपने द्वारा प्रत्येक वस्तुओं का निर्माण करता रहता है। शरीर पर अद्भुत अनुपम श्रृंगार कर समाज में अपना अभिनय प्रदर्शित करता रहता है। इसी कड़ी में जैसे सरोवर में कमल पुष्प विद्यमान है, सरोवर को सुशोभित कर रहा है और उसी कमल पुष्प पर एक भ्रमर बैठा हुआ है। संध्या का समय हो रहा है, अर्थात सूर्यास्त होने को है। कमल कोष पर एक भंवरा बैठा हुआ है और वो भंवरा कमल पुष्प का रसबान रसास्वादन कर रहा है। ऐसी दशा में सूर्यास्त जब हो जाता है तो कमल कोष में वो भ्रमर बंद हो जाता है और बंद होकर के रात्रिकालीन बेला में वो भ्रमर सोचता ही रहता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। सूर्य उदय होगा, सूर्य की किरण जब कमल पर पड़ेगी तो कमल पुनः विकसित होगा और मैं इस कमल कोष से आजाद हो जाऊंगा। इस संसार रूपी कीचड़ में कमल की भांति जो मानव इस समय जन्म लेकर के अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, उसमें अध्यात्म रूपी यदि किरण उस व्यक्ति के जीवन पर प्रकाशित नहीं करती तो वो व्यक्ति कहीं न कहीं संसार सागर में गोता लगाता रहता है। उसी कमल कोष में बंद भंवरे की भांति मनुष्य अपना चिंतन, अपना विचरण करता रहता है। वो भंवरा सोच ही रहा था, रात्रि बीतेगी, सवेरा होगा, सूर्य की किरण पड़ेगी और कमल पुनः विकसित होगा। इतना सोचते ही जब प्रातःकाल होता है तो उसी समय मदमत्त हाथी उस सरोवर में प्रवेश करते हुए और उस कमल कोष को अपनी सूंड से उठाकर उसी सरोवर में डुबो देता है और उस भंवर का अंत हो जाता है। आशय यह है कि संसार रूपी कीचड़ में कमल जैसे पुष्प के समान मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस जन्म के समय वह सन्मार्ग का अनुसरण करते हुए चलता तो रहता है, लेकिन तमाम प्रकार की ऐसी भ्रामक परिस्थितियां उस व्यक्ति के साथ बन जाती हैं जो कि काल के ग्रास में वो समाहित हो जाता है। और ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नवधा भक्ति का वर्णन किए हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए धर्म का आचरण करना है तो श्री रामचरितमानस का आश्रय जरूर लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। नित्य नए नए सवालों का जो जवाब है प्रत्येक मनुष्य, उसका जब उत्तर नहीं पाता तो श्री रामचरितमानस की तरफ बढ़ता है और ऐसी स्थिति में मनुष्य के साथ जो दुर्दशाएं हैं, प्रथमे नार्जिताम विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। इस संसार में अगर कमल जैसा खिलना है तो सूर्य अर्थात पिता, पिता अर्थात धर्म, धर्म का जरूर आश्रय लेना ही पड़ेगा। गोस्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवाओ ही सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी ते जानो।

प्राणी से चर सम प्राणी, ऐसी गतिविधि में जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो धर्म का आचरण नहीं करते, धर्मानुकूल प्रवृत्तियों का पालन नहीं करते, वही व्यक्ति ऐसे काल के ग्रास में जाकर के समाहित हो जाते हैं और उनके साथ के सहयोगी वो कहीं न कहीं वो भी धर्म के उस मार्ग का अनुसरण करना बंद कर देते हैं। गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर भावों में लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संघा। यदि जीवन में सन्मार्ग को धारण करना है तो सर्वप्रथम गोस्वामी जी की इस पावन पंक्तियों में लिखा गया है कि संतों का संग करें। संत कौन है? संत हृदय नवनीत समाना। जैसे गाय के दूध से दही, दही के बाद मक्खन का निर्माण होता है और वो नवनीत इतना कोमल होता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी कण आपको व्याप्त नहीं दिखाई पड़ता। ठीक उसी प्रकार से संत की परिभाषा गोस्वामी जी अपने शब्दों में लिखे हैं। व्यक्ति के मनुष्य के आचरण में भक्ति सर्वप्रथम होनी चाहिए। भक्ति के मार्ग से ही मनुष्य का जीवन धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे प्रभावित होता है। मनुष्य जब संत का सहारा लेता है तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत के माध्यम से ही जब सन्मार्ग मिलता है, अर्थात कथा का मार्ग मिलता है, कथा में किसकी कथा होती है? जिसके जीवन में व्यथा होती है उसी की कथा होती है। और व्यक्ति जिसके जीवन में व्यथा है यानी कि वो अनुभवी है, वही आपका स्टार है, वही आपका अभिनेता है। उसी के जीवन का आप अनुसरण करते हुए जब चलेंगे तो जीवन की संपूर्ण कठिनाइयाँ आपसे दूर भगेंगी। और इस परिस्थिति में केवल ईश्वर यही कहता है कि सर्वप्रथम भक्ति। भक्ति कैसे आएगी? श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। यहाँ भी प्रथम भक्ति सुनने के लिए बता रहे हैं। और सुना कैसे जाएगा? कानों से ही सुना जाएगा। यदि कानों से हम श्रवण कर रहे हैं तो सुनेंगे किसको? सुनेंगे हम संतों को। संत की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो अपने जीवन का संपूर्ण आनंद उत्सव समाज के लिए धार्मिक आयोजनों, धार्मिक क्रियाकलापों में अपना संपूर्ण जीवन जो व्याप्त कर देते हैं, जो उसी में गला देते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा के उपदेश को लेके संतों को सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जीवन में आने वाली आपत्तियों को दूर करने के लिए, परिस्थितियों को अच्छा लाने के लिए प्रत्येक मानव आज परेशान है। इस परेशानी की स्थिति में यदि सबसे बड़ा धैर्य होता है, और धैर्य का अनुपालन अगर आपको देखा जाए तो धैर्य संतों से ही सीखने को प्राप्त होता है। तो दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, भक्ति के इस नवधा भक्ति के मार्ग में श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन का यदि आश्रय आप लेंगे, और कीर्तन का आश्रय कहाँ से मिलेगा? जो व्यक्ति सादा जीवन, संपूर्ण जीवन, वो किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय का कहीं का भी हो, वो अपने धर्म का अनुसरण करते हुए यदि अपना जीवन यापन कर रहा है तो वही सबसे बड़ा संत है। और उस संत की परिभाषा में दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी जो सुनने की कला है, जो समझने की कला है, उस परंपरा को यदि मानव कहीं न कहीं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे तो उसके जीवन में भी तमाम पाप, संताप आदि कई सारे ऐसे विषय जो है उसका समूल विनाश हो जाता है। इसी कड़ी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य कहीं न कहीं अपने विषयों में इतना उलझा हुआ है, गृह कारज नाना जंजाला, घर के कार्यों में इतना उलझा हुआ है कि वो धर्म करने को भूल गया है। धर्म के रास्ते, धर्म करना जरूरी नहीं है यज्ञ, यज्ञादिक अनुष्ठान, या किसी प्रकार का पूजा पाठ, या किसी मंदिर में, या किसी मस्जिद में, या गुरुद्वारे में, या कहीं भी जाना धर्म नहीं कहलाता। धर्म एक असहाय, एक पीड़ित, एक शोषित, एक वंचित, किसी भी विषय, किसी भी वर्ग, किसी भी वस्तु, यदि आप उसको अपना प्रावधान, आप उसको प्राथमिकता दे करके और उसका सहारा बन जाते हैं, एक दूजे का सहारा बन जाते हैं, तो वही जीवन का सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। ये नीति वचन आपको ये शिक्षा देती है कि प्रत्येक मनुष्य के प्रति समर्पण की भावना आप तब रख पाएंगे जब मनुष्य अगला आपके प्रति समर्पित होने का एक साहस करेगा। लेकिन मनुष्य में मनुष्यता कैसे दिखाई जाए, कैसे देखें अगले में मनुष्यता व्याप्त है या नहीं है, इसकी खोज कैसे करें? इसकी खोज जैसे अध्यात्म रूपी रिचार्ज जब व्यक्ति के अंदर होता है।

0: अध्यात्म से जब वो सराबोर होता है। और अध्यात्म है क्या? क्या जरूरी है कि व्यक्ति पूजा पाठ करके ही अपने आप को अध्यात्म के जगत में वो नाम अपना रोशन करे? नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति वह भी है जो प्रतिदिन पूरे दिन प्रातः लेकर के सायंकाल तक परिश्रम कर रहा है, उसके अंदर भी वही ऊर्जा, वही चेतना, वो चाहे अपने परिवार के लिए कर रहा हो, चाहे संसार के लिए कर रहा हो। सर्वप्रथम उसके पास अनुभव भी अधिक होगा, और अनुभव के साथ साथ वह क्रियाकलाप जो वह कार्य कर रहा है, वह एक उसके लिए बहुत बड़ा वरदान और तपस्या है। उस तपस्या से ही जो वो सीख मिलती है, वही सीख नीति वचन में कही जा रही है कि मनुष्य की मनुष्यता को, उसकी जड़ता को, उसकी बुद्धिमत्ता को वहीं पर उसकी परख होती है। और ये नीति वचन के साथ साथ धर्म ग्रंथ पुराण आदि जो भी धर्म हैं, उन सब के एक ही सार निकल करके सामने आते हैं कि प्रत्येक मानवों के अंदर मानवता का यदि संचार रहेगा तो संसार सागर में कभी भी किसी प्रकार की कोई आपत्तियां मनुष्य को नहीं आएंगी। ये धैर्य, संयम, आचरण, सभ्यता, अनुकूलता जीवन में लानी है तो सर्वप्रथम धैर्य का निर्माण करना होगा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पर खियेचारी। पूज्य गोस्वामी जी ने सुंदर शब्दों में लिखा है कि धैर्य जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और अगर आप आपत्तिकाल में धैर्य से युक्त नहीं रहे, धैर्य से संलिप्त नहीं रहे, तो उसी समय आपका बना बनाया जितना साम्राज्य है, धैर्य न रखने की वजह से उसका संपूर्ण विनाश हो सकता है। विकट से विकट परिस्थिति में आध्यात्मिक हों या ना हों, अनुभवी होना जीवन में बहुत आवश्यक है। आपके मित्र आध्यात्मिक हों, आपके पिता आध्यात्मिक हों, आपकी माँ आध्यात्मिक हो, आपके भाई आध्यात्मिक हों, एक छोटा सा बच्चा ध्रुव, प्रहलाद आदि जैसे पंचवर्षीय बच्चों के अंदर जब अध्यात्म जग सकता है, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी वृद्ध का आश्रय लेकर के हम धर्म का सहारा लें या फिर बनाएं। बच्चों के अंदर भी ईश्वर का वास होता है। कभी कभी बच्चों की प्रेरणा मनुष्य के लिए लाभदायक हो जाती है। इसलिए हमेशा दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, तो जरूरी नहीं है कि 24 गुरुओं का निर्माण करके जीवन की रूपरेखा खींची जाए। एक माँ जन्म के समय प्रथम गुरु होती है। शिक्षा गुरु किसी जाति पंथ समुदाय से नहीं आते। शिक्षा के समय कोई भी गुरु जीवन काल के उस सत्र को, आपके भविष्य को संवार सकता है, बना सकता है। आज का नीति वचन आपके लिए प्रेरणादायक हो। इस प्रेरणा में आपको एक ही यही संदेश देते हैं कि मनुष्यता, मानवता, सद्भाव, समरसता, इस प्रेरणा को सदैव जगा करके, इस अलख को सदैव जगा करके रखें। आपका दिन शुभ हो।
1: हाँ भैया,
2: देखा ही नीति वचन सतीश शुक्ला जी कितना बढ़िया बताए।
1: खूब खूब भैया,
2: मानवता, सद्भाव, आपस में मन के शांति के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बात बताएं जोन भाई मार किसान भाई सुने गुनयो का। अब देखा हो बात बत कही होत रही खेती किसानी के साथ साथ भाई और भी कुछ ना कुछ किसान भाई करत बाटन। तो जे मछली पालक भाई बाटन भाई, मछली पालन का भी काम करत है ना, यहाँ समय देखा भाई ज़्यादा जरूरी हो जाता था बारिश में वैसे भी। तो देखा मछलियन के लिए पौष्टिक आहार कैसे का बनाई, का का जरूरी होता है, तो ये भी बात बत कही भाई भाई डॉक्टर दीनानाथ सिंह से शैलेंद्र प्रताप का।
1: अच्छा,
2: तो हम
1: अच्छा।
2: कही किसान भाई का सुनाई और गुनाई।
1: बिल्कुल सुनवा दो
3: किसान भाइयों, खेती किसानी के साथ साथ तमाम पंच भैयारे यहाँ जी पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन करत हैं, और हमारा दूरा ना है खेती के आधारित हो भी फायदे का सौदा बात है, मुफीद का सौदा है। मूल सौदा तब अच्छा रहे, लाभकारी रहे, जब वैज्ञानिक सोच हो, वैज्ञानिक ढंग हमारे मत्स्य पालक भाई हरे अपने ही हैं। और ख़ास तौर भाई मछलियों की देख रेख और खान पान की बात की जात है, तो जरूरत यह बात का वो तो उनका पूरी जानकारी हो कि कौन तरीके से होकर पौष्टिक आहार वो तैयार करी हैं। यही विषय पे बत कही के बड़े अपने बीच में भैया दीनानाथ सिंह जी यहाँ हैं, जो उनकी वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक मत्स्य वैज्ञानिक रहा है। भैया आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँ कि मत्स्य पालक भैया इनका कौन कौन बातों पर जानकारी होनी चाहिए, का महत्व है कर पौष्टिक आहार का मछली के जीवन में।
4: मत्स्य पालन के लिए विशेष रूप से जैसे कि साल भर हम मछली का पालन करते हैं, तो उसमें जो हमारी मुख्य जो मछलियाँ जिनको हम पालते हैं, रोहू, नयन, भाकुर और सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कार्पियो, तो इसके लिए जो प्राकृतिक आहार उसके अंदर होता है पानी के अंदर, तो वो उनके लिए पूरा नहीं पड़ पाता, इसलिए उनकी पूरी बढ़त जो है बढ़वार नहीं हो पाती है और जिससे पूरा पूरा लाभ नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार से हम जो है उसके लिए बाहर से कुछ खाना उसमें डालना पड़ता है, उसी को हम संपूरक आहार।

0: बोलते हैं, और उस संपूरक आहार में तरह तरह की चीजें जैसे खली है, भूसी है, पहले से तो हम यही देते चले आ रहे हैं।
1: हाँ, तो परंपरा से रहा। अच्छा भैया, कैसे तैयार करें, पौष्टिक आहार कैसे तैयार करें, वैज्ञानिक विधि का बांटे कर और कौन प्रकार से करें?
0: तो खली और भूसी जब हम लेते हैं तो उसके अंदर हम उसकी जांच करवाते हैं कि उसके अंदर कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना कैल्शियम, कितना मैग्नीशियम, उस पोषक तत्व तो उसके अंदर क्या क्या है। तो ये तो है उस, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मतलब और वेस्ट चीज़ ज़्यादा होती है, तो उसको तो हम खिलाते ही खिलाते हैं, और खिलाने की भी कई विधियाँ हैं आगे चल के हम बताएंगे
1: जी।
0: और इसके अलावा बाज़ार में जो पौष्टिक आहार बनता है अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, तो वो फिर इन चीज़ों को, मछली को असली में क्या क्या आवश्यकता है, कब कब आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से बनाया जाता है। कि
1: तो कहे का मतलब आपको यह है कि भाई तालाब में जो उन पानी है ओकर जांच करा लें, तालाब की माटी की जांच करा लें, वह तरीके से आहार तैयारी करें।
0: हाँ, तालाब का पानी पहले जांच होना चाहिए उसके अंदर। इसके अंदर जो छोटी छोटी कीड़ी होती है, जैसे पहले हम लोग पटाश उटा डाल के मार देते थे, तो वही जो है उसका प्राकृतिक भोजन है
1: जी,
0: और जिसको हम अंग्रेजी में प्लैंकटन कहते हैं। और उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे ये नीलहर से शैवाल होते हैं
1: जी,
0: वो भी जो है खाना खाने के काम में आते हैं। और ग्रास कार्प मछली है, ये केवल घास खाती है।
1: अच्छा अच्छा
0: तो और कुछ मछलियाँ जो कि छोटे छोटे पौधे के लार्वा खाती है उनके, छोटे
1: अच्छा,
0: जंतुओं के। तो इस तरह का उनका भोजन अलग अलग होता है, तो आपस में इनका कंपटीशन नहीं होता है।
1: हाँ, जरूरत बात का है कि भाई मिलवा मछली डाले तालाब में, क्या कहते हैं आप?
0: हाँ, जो तालाब में अगर उसका भरपूर लाभ लेना है
1: जी,
0: कि पूरा का पूरा हमको लाभ मिले, तो उसमें 6 तरह की मछलियाँ जो है उसमें डालने के लिए और उसका पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि उसका जो है, अच्छा 6 मछलियाँ जो है आपस में किसी बात के लिए स्पर्धा इनके अंदर नहीं है, और अलग अलग सतह पे खाती हैं। जैसे कि कतला मछली है, एकदम पानी के सतह पर खाती है, उसी हिसाब से उसका मुँह बना हुआ है। रोहू मछली है तो बीज के कॉलम में खाती है, वो उस साइज से उसका मुंह बना हुआ है। अब जो है वो नैन मछली है, उसका मुंह थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है, वो नीचे तली में जाकर के खाती है। और इसी प्रकार से और भी जो 3 मछलियां हैं उनका भी खाने की विधि अलग अलग है।
1: लेकिन सिंह साहब, बात ही रहा था कि तालाब में हर स्तर पर पौष्टिकता हो चाहिए, पौष्टिक आहार का उपलब्धता हो चाहिए, तभी तो मछली खाई है।
0: हाँ,
1: तो ये कौन पौष्टिक आहार है और का कैसे तैयार करें, का मात्रा रखें, पूरक आहार भी कैसे तैयार करें?
0: पूरक आहार के लिए जो है आपको पहली चीज जो है कि मतलब उसके अंदर डालना क्यों जरूरी है, ये पहले पानी का जांच करना पड़ेगा आपको। पानी में जांचने के लिए उसका जो प्लैंकटन है, छोटी जो कीड़ी है, उनको एक छानने वाली जाल आती है छोटी सी, जिसको प्लैंकटन नेट कहते हैं, तो उसे छान करके हम जो है वो माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं कि उसके अंदर प्लैंकटन की कितनी मात्रा है और क्या क्या चीज़ उपलब्ध है, क्योंकि हर उसको नहीं खाती है मछली। तो अगर उपलब्धता कम है तो उसको बढ़ाने के लिए भी उपाय है। उसके बढ़ाने के लिए उसके अंदर आपको कार्बनिक और अकार्बनिक खाद, और सबसे तो बढ़िया है कि गांव देहात में जो गोबर मिलता है, आप गोबर को लेकर के डाल दें। गोबर डालने से पहले ध्यान रखें कि पहले हम 400 से 500 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर की दर से उसके अंदर पहले डाल छिड़क दें, और उसके बाद 15 दिन के बाद जो है उसके अंदर वो गोबर जो है 2500 से लेकर के 7500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 10 किस्त में।
1: अच्छा,
0: ध्यान रहे कि 10 किस्त में डालें, और साथ साथ पानी का रंग भी देखता रहे कि हरा मतलब रहे और ज़्यादा हरा ना हो, हल्का भूरा पड़ लिए हुए हो।
1: तो भैया कितना कितना दिन के अंतराल पर डालें?
0: हाँ, इसको जो है हर महीने जो है उसी हिसाब से आप डालते रहिए, लेकिन पानी को आप देखते रहिए। जब अगर ज़्यादा मात्रा पड़ जाएगी तो इसके माने कि उसके अंदर जो है नीचे जा कर के वो भोजन सड़ेगा और उससे जो है पानी में प्रदूषण पैदा हो जाएगा, मछली बढ़ेगी भी नहीं, आपकी लागत भी लग गई और बीमारी और पैदा करेगा
1: जी।
0: तो बीच में मछलियों को, अच्छा दूसरी एक चीज़ है कि उसमें स्वास्थ्य परीक्षण भी करते रहना चाहिए। आप बीच बीच में जाल चला करके उसके तालाब के अंदर
1: मछली
0: मछली को देख लीजिए, दौड़ भी मिल जाएगी उनको, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और उनको देख लीजिए कोई बीमारी वगैरह तो नहीं लग रही है। अगर ऐसा कुछ महसूस आपको होता है मछलियों के स्वभाव में या तैरने में, तो आप उसको लेकर के जांच करवाइए, कार्यालय सरकारी है उनमें जो है जा करके।
1: सिंह साहब, जो सामान्य मत्स्य पालक हैं हमारी तरह, उनका अगर रात्रि तैयार करे का है, पौष्टिक आहार तैयार करे का है, तो मुख्य मुख्य चीज का हो चाहिए
0: उसमें? देखिए, प्रोटीन होना चाहिए उसके अंदर, प्रोटीन। अब इस ये जो चीजें हैं जो जो प्राकृतिक रूप से जो तैयार होते हैं ना, उसके अंदर प्लैंकटन, तो

0: वो तो जो प्लैंकटन होता है वो एक तरह से छोटी छोटी जो कीड़िया होती है, जीवी होता है वो, उनके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता
1: नहीं
0: है।
1: जैसे ही कहा जाता कि कना है
0: हाँ,
1: और
0: कना वगैरह,
1: खलिया
0: हाँ,
1: है।
0: कना खली में प्रोटीन होता है ना,
1: हाँ
0: प्रोटीन काफ़ी मात्रा में उसके अंदर होता है और
1: जी
0: कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है उसके अंदर,
1: जी
0: वो 30 से 35% तक करीब करीब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मेन ये दोनों चीज़ें जो है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और कैल्शियम मैग्नीशियम जो होता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, तो उसके लिए बहुत उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन मतलब उनको पेट भरने के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और जो माइक्रो

0: वो डालिए, लेकिन इससे पहले पानी के मैंने बता ही दिया कैसे जांच होगी, मिट्टी की भी जांच करवा लीजिए। मिट्टी की जांच में आपका पीएच एक तत्व तो होता है जो कि 7.5 से 8.5 होना चाहिए, मतलब कि अल्कलाइन
1: अम्लीयता
0: अम्लीयता और क्षारीयता जो होती है, तो अम्लीय पानी नहीं होना चाहिए, क्षारीय अच्छा। होना चाहिए हमेशा पानी,
1: अच्छा।
0: तभी बढ़वार अच्छी होगी और जो आप तत्व तो डालेंगे वो सोख पाएगा मिट्टी और मछली खा पाएगी।
1: अच्छा सिंह साहब, एक बात ये हो रहा था कि भाई आज मछली छोटा है तो शायद कम आहार की जरूरत पड़े, जब बढ़ाई लागत है तो ज्यादा पड़ा था, तो कहाँ मात्रा रखें भैया और कौन कौन समय पर दें?
0: शुरू शुरू में जब मछली के बच्चे जिसको कि हम अंगुलिका बोलते हैं, अंगुली के बराबर की हो जाती है 2.5-3 इंच की, तो जब डालते हैं उसके अंदर तो उसको 2 से 3% एक अंदाजा मोटा मोटी हम लगा लेते हैं कि हमारी मछली 5 किलो मान लीजिए
1: जी,
0: 5 किलो बच्चे हम डाल रहे हैं उसके अंदर, तो 2 से 3% उनके वजन का
1: अच्छा।
0: उतना खाना डालिए और उसके बाद जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी 15-20 दिन में आपने फिर जाल चलवाया तो थोड़ा सा और फिर लेकर के वेट कर लिया उसका वजन, तो पता चला कि नहीं इतना बढ़ गई है, तो उस हिसाब से खाने की मात्रा बढ़ाते जाइए।
1: मतलब 2 से 3% मछली के जो वजन है
0: वजन के बराबर देना
1: चाहिए रहती। हाँ
0: अच्छा, खाना देने के लिए भी आग जैसे खली और भूसी है ऐसे छिड़क मत दीजिए, ले जाकर किनारे किनारे चारों किनारे पर एक बांस गाड़ दीजिए।
1: अच्छा,
0: बांस दो बांस अगर डाल करके उसके रस्सी बांध दीजिए और रस्सी में बोरी में रख करके लटका दीजिए उसको, बोरी में छेद कर दीजिए जगह जगह ताकि मछली आए तो उस बोरी के छेद से जो है उसको खाने को खाए, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा खाना कितना बच रहा है या खाना पूरा चट कर गई मछली तो और खाने की आवश्यकता इसके लिए है। और समय निर्धारित होना चाहिए क्योंकि मछलियों के अंदर भी सेंस होता है, वो समय की बड़ी पाबंद वो भी होती है, वो समय पर भोजन खोजने लगती है, जिससे आप लटकाएंगे वो बोरी और आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर वो कुछ कुछ करके आकर के वो खाना खाने लगेंगे।
1: तो एक समय तय कर लिए भाई और चारों कोने में ज्यादा ज्यादा जगह पर उसका बोरी लटका दे ताकि मछली लड़े नहीं।
0: हाँ,
1: सही खुराक का इस्तेमाल कर।
0: उसके अलावा आपको अगर ग्रास कार्प मछली उसमें डाल रखा है आपने
1: जी,
0: तो ग्रास कार्प की खासियत है कि वो अपने बराबर वजन के लिए खा जाती है घास, उसके लिए पहला ग्रास है और जलकुंभी नहीं खा पाती है, और आपका और भी कोई घास सेवार होती है या ये सब घास खाती है पानी वाली, आपको यहाँ तक कि बरसी वगैरह भी खा जाती है।
1: अच्छा।
0: तो उसके लिए अगर आप ग्रास कार्प डाल रखे हैं उसमें तो ये ध्यान रखिए कि इस घास की उपलब्धता आपको साल भर बनी रहे, ऐसा ना हो कि कुछ दिन तक आपके पास घास चला तालाब वाला, उसके बाद आपके पास घास ही नहीं है, तो फिर मछली वो जो है सिर बड़ा हो जाएगा, बॉडी पतली हो जाएगी।
1: तो मतलब बरसी मच्छा एक पूरा कहा रहा है का देत रहा है अगर हरा तो
0: बीच बीच में देते रहिए।
1: हां, जो मछली ग्रास कार्प बताओ
0: था ग्रास कार्प
1: ओकरे बड़े घास मुफीद रहा था,
0: घास घास खाने से उसका यह है कि बड़ी मतलब 3 किलो अगर उसने खा लिया घास तो 800 ग्राम जो मांस बन जाता है मछली का।
1: अच्छा, अच्छा अच्छा।
0: और कुछ घास तो ऐसे अपने बिस्टा के रूप में बाहर निकाल देती है वो, तो जमीन पर जो पड़ता है मिट्टी में मिल करके वो खाद का भी काम करता है।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए उसका बड़ा डबल फायदा है।
1: हाँ हाँ,
0: तो वजन भी बढ़ा और आपको जो वेस्ट बचा वो जो है उसके अंदर मिट्टी में मिल करके खाद का भी काम कर दिया।
1: जी जी जी,
0: तो इसकी उपलब्धता बराबर 12 महीने आपको।
1: अच्छा, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम है या लोहा है या कापर है जिंक है, वो कमी शरीर में रहा था मछलियों के,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो करे पूरक के रूप में क्या करें?
0: ब्लड के लिए उनके जो है आयरन से बने हुए पोषक तत्व आते हैं अलग से, आयरन है कैल्शियम है, क्योंकि आयरन जब उनके अंदर जैसे आदमी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर मछली के अंदर भी ब्लड होता है उसके अंदर भी हीमोग्लोबिन होता है, तो उस जो लाल कणिकाएं बोले जाते हैं,
1: मतलब यह है कि भाई जो पोषक तत्व तो है ओकर भी प्रयोग करते रहा, ओकर पैकेट मिला था बीच बीच में वो देते रहा तो मछली को संतुलित आहार मिल जाए। सिंह साहब आप बहुत बढ़िया जानकारी दे ना, आप बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया, हम कहीं देखा ही मछलियों के लिए पौष्टिक आहार पे डॉक्टर दीनानाथ सिंह से शैलेंद्र प्रताप बात कही, तो जे भी मछली पालक भाई है नी बातन का ध्यान दही तो फायदा हुए। हम कहीं देखा हो चलत चलाओ तो काठी और गौ नहीं सुनवाई दिया जाए का?
3: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
2: तो देखा कमला प्रसाद पाल उनके संघातिन गाँव के पूर्वी व किसान भाई का सुने
3: सुनवाया।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया एक महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा, बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व, ग्लासगो में कल होगा आयोजन का।

0: शुभारंभ। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्री मणिरामदास छावनी में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा व्यवस्था, सीईओ की नियुक्ति, ट्रस्ट के रिक्त पदों और धार्मिक समिति के पुनर्गठन समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ट्रस्ट के महासचिव कृष्णमोहन ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए गठित समिति ने आवेदनों की अधिक संख्या और प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी है। तब तक प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
1: एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलम्ब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है।
0: ट्रस्ट ने साफ किया कि राम भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट है और मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बनी हुई है। बैठक में चढ़ावा गणना व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मीडिया के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया है। ट्रस्ट ने धार्मिक समिति के पुनर्गठन का भी फैसला लिया है। इस समिति की अध्यक्षता स्वामी गोविंद देवगिरी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विद्यार्थियों की आकांक्षाएं पूरी करने और युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी।
0: रक्षा मंत्री ने संसद में विपक्ष के हंगामे पर कहा कि सरकार ने प्रत्येक मुद्दे पर सार्थक बहस करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन विपक्ष सड़कों पर उतरकर मुद्दों को उलझाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कल नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष छात्रों के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहा है।
3: जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जल निकासी के तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जल निकासी के प्रबंध पर जोर देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाए ताकि इसे नाले चोक न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ चौकियां सक्रिय रहें और बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री भारतीय

0: जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है। श्री योगी ने कहा कि भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में सुशासन और लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया के अंदर एकमात्र एक राजनीतिक दल के रूप में, सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में, मूल्य और आदर्शों पर विश्वास करते हुए सुशासन लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में अपनी एक मजबूत उपस्थिति प्रस्तुत की है। दल से बड़ा देश केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों में सही सोच और राष्ट्रहित की भावना विकसित करना भी है। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ का आज बागपत के बड़ौत में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। श्री अरुण ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बधाया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री धनखड़ का शव 20 जुलाई को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मिला था। ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का कल से शुभारंभ होगा। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के 10 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें 2 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। प्रयागराज के कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट और जौनपुर के रोहित यादव भाला फेंक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टेपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में भाग लेंगी। वहीं प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर की पैदल चाल और नीरू पाठक 400 मीटर की रिले दौड़ में प्रतिस्पर्धा करेंगी। यूपी पुलिस की अस्मिता डे जूडो और आगरा के आदित्य प्रताप सिंह बॉक्सिंग में दम दिखाएंगे। लखनऊ के श्रियांश त्रिवेदी और भदोही के सागर पैरा एथलीट के रूप में भाग लेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में बीते 3-4 दिनों से हो रही बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। वहीं कई जनपदों में नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी भी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गौतमबुद्ध नगर में हिंडन और यमुना नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 18 बाढ़ चौकियां और 18 बाढ़ शरणार्थी स्थल बनाए गए हैं। प्रशासन की टीमें सतर्क हैं और जल भराव वाले इलाकों में सहायता पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से 25 जुलाई के बीच प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया 1 महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा। बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। ग्लासगो में कल होगा आयोजन का शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम अजीम शायर

0: मिर्जा गालिब पर आधारित किस्सा गोई, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का।
1: किस्सा गोई। बेशुमार लम्हों की वो तारीखी इबारतें जो समय की डायरी में पोशीदा थीं, दिलचस्प राज बनकर आज जज्बात की स्याही को छूकर बेसाख्ता मन के पन्नों पर उतर आई हैं, किस्से कहानियों की बयानियां बनकर।
2: और दोस्तों, मन के पन्नों पर उतरती इन्हीं नायाब कहानियों के कुछ नायाब दिलकश पलों को चुनकर हम हाजिर हैं अपने नए कलेवर नए अंदाज में सजे प्रोग्राम किस्सा गोई के साथ। आप सभी को हमारा नमस्कार।
3: नेहा जी
2: जी,
3: बात जब किस्सा गोई की हो तो आंखों में उतर आता है मासूम बचपन, और साथ ही जाग पड़ते हैं कल्पनाओं के वो सारी मंजर जिन्हें हमने कभी दादी नानी के झुर्रीदार हाथों की सलवटों पर करवटे बदलते हुए जहन में उकेरा था।
2: वंदना जी, मैं आपको सच बात बताऊं, मेरी दादी जो आप कह रहे हैं ना, ये सलवटें और झुर्रीदार, उनके पतले से हाथ, इतना मजा आता था उनके हाथों को तकिया में समझ लेती थी और सोने में बड़ा अच्छा लगता था। और देखिए, वक्त के साथ जिनमें कभी जीवन की सख्तियां तो दिखी ही, कभी नरमियां भी नजर आई। यानी कहानी कुछ असल है, कुछ ख्वाब है, तो कुछ तर्जी बया है।
3: तो चलिए, अब हम भी किस्सा गोई के कैनवस पर उकेरते हैं रोचक किस्सों की वो चित्र जिनमें छुपे हैं अदब के रंग।
2: अदब के रंग, ओहो, यानी किस्सा जुड़ा है अदब की दुनिया से।
3: हाँ।
2: बात समझ में आई, लेकिन कुछ कुछ,
3: ओहो, तो चलिए, जो कुछ कुछ हुआ है ना
2: जी,
3: उससे गुजरते हुए बहुत कुछ जानने के लिए सुनाते हैं अपने दोस्तों को ये बेहतरीन गजल। क्या पता इसे सुनते हुए हमारे दोस्तों के साथ साथ आप भी समझ जाएं कि आज किस दानिश्वर के जीवन के दिलचस्प किस्से से रूबरू होंगे हम। तो लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है ये बेहतरीन गजल।

0: वाह, बेहद उम्दा, मानखेज, दिल नशीन गजल।
1: देखिए नेहा जी, आप तारीफ गजल की कर रही थी तो वाकई कमाल की गजल थी
0: जी।
1: लेकिन फिलहाल पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपके दिमाग के घोड़े कहाँ तक दौड़े और क्या कुछ पता करके आए हैं, जरा मुझे जल्दी जल्दी फटाफट बताइए।
0: दोस्तों देखिए, दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं धीरे धीरे और ये समझती है ना तुरंत, ये क्या कोई सुपर फास्ट गाड़ी है क्या, है ना। लेकिन फिर भी चलिए, जितने मेरे दिमाग के घोड़े दौड़े हैं मैं थोड़ा अंदाज लगाती हूँ, है ना। हाँ, पकड़ पे आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है वंदना जी।
1: क्यों,
0: ठीक है,
1: आगे निकल गए क्या?
0: आपके दिए क्लू को डिकोड करना मुझे थोड़ा सा दुश्वार तो लग रहा है। कंफ्यूज भी हूँ कि आप बात किसकी करना चाहती हैं, किस्सा कोई कार्यक्रम के अंतर्गत जगजीत सिंह साहब की गजल सुनाती हैं, अदब की बात करती हैं। अदब से एक बात मुझे याद आ रही है।
1: अच्छा,
0: एक तस्वीर उभर आई है।
1: ओहो,
0: मैं बोलूं
1: तस्वीर है, जरा ये बताइए।
0: मैंने जो जहन में सुना देखा, जो तस्वीर बन चुकी है उनकी अदब के नाम से, वही लंबे से जिनके माथे पर टोपी है और कुछ गोरे से हैं और जब चलते हैं तो कुछ लोग उनसे बिल्कुल खौफ खाते हैं और कुछ करुणामय स्वर और शब्द उर्दू के अल्फाज फारसी की भी बातें करते हैं।
1: मुझे ये लग रहा है नेहा जी
0: जी
1: कि क्लू कुछ जो है वो राज जो था, वो रहस्य जो था, वो पर्दा थोड़ा थोड़ा उठ रहा है। आप पहुंच रही हैं।
0: पहुंच गई। सच में?
1: हाँ, क्योंकि देखिए बात अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और हमारे दोस्तों ने तो तुरंत पकड़ लिया होगा जब गजल सुनी होगी, और बात किस्सा गोई की हो रही है, बात अदब की जा रही है।
0: हाँ।
1: और ये गजल किसकी थी जिसकी आपने तस्वीर अभी उकेरी है ना?
0: मिर्जा गालिब साहब की।
1: क्या बात है, तो आपने पकड़ लिया।
0: शुक्रिया। क्योंकि गालिब साहब को जैसे आप, हम और सभी लोग जानते हैं, एक जहन में पाक साफ तस्वीर उभर आती है ना, और ऐसा लगता है जैसे पन्ने दर पन्ने खुलते जा रहे हैं सदियों के जीवन के। नहीं
1: तो देखिए, जब आपने पहचान ही लिया है, और हम दोस्तों को खैर ये भी बताते चलें कि जिक्र होगा आज दोस्तों मिर्जा असदुल्लाह बेग खान साहब का, जो अपने तखल्लुस गालिब से जाने जाते हैं और जो उर्दू एवं फारसी भाषा के एक महान शायर रहे हैं और फारसी कविता के एक प्रवाह को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करने का जो श्रेय है नेहा जी, वो भी उन्हीं को दिया जाता है, यानी गालिब साहब को। और जो मजेदार किस्सा है, देखिए वो आमों के शौकीन थे,
0: आम खाने के,
1: बिल्कुल आम के बहुत शौकीन थे, और आमों के लिए तो वो कहाँ कहाँ से उनके लिए आम मंगाए जाते थे, और आमों को लेकर भी बहुत दिलचस्प किस्से इनके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल आज एक अदब की जब दुनिया की बात कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं नेहा जी, तो कुछ उससे जुड़ा कुछ किस्सा आपको याद आ रहा है?
0: एक मिनट, ये आम वाली बात जानकर मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, आया, याद आया। क्योंकि दिमाग पे जोर डालना पड़ता है भाई।
1: लेकिन बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते।
0: दोस्तों अब हम बिल्कुल भी

0: देर ना करते हुए सुनाते हैं वो किस्सा जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि अदब की दुनिया में गालिब साहब का नाम स्वर अक्षरों में क्यों झिलमिला रहा है। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब दिल्ली सल्तनत पर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का राज था। बहादुर शाह जफर साहब खुद भी बड़े शायर थे और उनके उस्ताद थे मशहूर व मारूफ शायर शेख इब्राहिम ज़ौक। और कहते हैं कि गालिब और ज़ौक साहब के बीच प्रतिद्वंद्विता उर्दू साहित्य के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है।
1: सच कहा नेहा जी,
0: याद आया?
1: बिल्कुल याद आया
0: जी। आगे की बात
1: तो दोस्तों हुआ यूं कि एक बार गालिब साहब अपने दोस्तों के साथ कुछ हंसी ठिठोली कर रहे थे
0: जी।
1: और ज़ौक साहब पालकी में बैठे हुए वहां से गुजर रहे थे।
0: फिर
1: हुआ यूं कि ज़ौक साहब को आता देख कर गालिब साहब खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो हाजिर जवाबी जो तंजिया अंदाज था उसके लिए भी गालिब साहब बड़े मशहूर हुआ करते थे
0: जी।
1: तो उन्होंने एक मिसरा कहा,
0: बना
1: है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। हालांकि उस समय ज़ौक ने मियां गालिब को कुछ कहा नहीं, पर इस तंज की शिकायत नेहा जी बताइए उन्होंने किससे की होगी?
0: बहादुर शाह जफर से कर दी। इसके साथ ही उन्होंने गालिब के नाम शाम की दावत और मुशायरे के लिए न्योता भी भिजवा दिया। असल में इस न्योते के जरिए ज़ौक गालिब को बादशाह सलामत के सामने भेषित करना चाहते थे।
1: लेकिन गालिब साहब भी कम नहीं थे, उन्हें इस बात की भनक तो लग चुकी थी कि दरअसल मामला क्या है, आखिर मरता क्या ना करता। गालिब साहब पहुंचे मुशायरे में और उनके पहुंचते ही बादशाह सलामत ने सवाल दागा
0: जी
1: कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता कहकर आपने गालिब साहब ज़ौक साहब का मजाक क्यों उड़ाया?
0: और उसके बाद दो घड़ी मिर्जा गालिब साहब सोचे और घबराए, जान बचाने के लिए कह दिया कि ये उनकी नई गजल का एक मिसरा था। असल में दोस्तों मिसरा गजल के एक हिस्से को कहते हैं। इस पर बादशाह ने मिसरे को पूरा करने के लिए कहा। अपनी ही बात में खुद को फंसता देख मियां मिर्जा ने मिसरे को कुछ ये कहकर पूरा किया कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है।
1: क्या बात है, क्या हाजिर जवाबी है नेहा जी।
0: मतलब उन्होंने ये कह दिया कि गालिब की आबरू क्या है नहीं,
1: लेकिन
0: बचा लिया खुद को।
1: बचाने की कोशिश तो बहुत की उन्होंने, लेकिन ज़ौक साहब बहुत अच्छे से समझ गए थे कि मिर्जा साहब निरी झूठी बातें कर रहे हैं। ये शायरी जो कर रहे हैं, शायरी की आड़ में बचने की कोशिश उन्होंने जो की है वो झूठी बात है। इसलिए गालिब साहब को जाल में फंसाने के लिए उन्होंने खुद ही इसकी खूब तारीफ की, बहुत वाह वाह मुकर्रर किया और उसके बाद धीरे से महफिल में कहा कि जरा मिर्जा साहब इस गजल को पूरा कीजिए ना, सुनाइए हमें भी।
0: तो दोस्तों हुआ यूं, मिर्जा गालिब साहब ने वहीं बैठे ही बैठे जो गजल कही उसे हम आपको सुनाते हैं जगजीत सिंह जी की आवाज में। बाखुदा आप सब भी खायल हो जाएंगे मिर्जा साहब की हाजिर जवाबी, अकलमंदी और उनकी सुखन वरी की।
1: और हाँ दोस्तों, जब गजल के बाद मिलेंगे तो जानेंगे कि किस शायर का वो कौन सा शेर था जिस पर फिदा होकर मिर्जा साहब अपना पूरा दीवान न्यौछावर करने को तैयार हो गए थे। फिलहाल तो वक्त हो रहा है इस खूबसूरत गजल के साथ लुत्फ अंदोज होने का, तो मुलाहिजा फरमाइए।

0: तुम कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
1: अर्ज किया है,
2: इरशाद हो।
0: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
3: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल।
2: अल्लाह।
0: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल।

کیا بات، مرزا مقرر۔

0: हैं और भी दुनिया में सुखनबर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और तो चलिए इस बयानी में जोड़ते हैं वो खास किस्सा जिसका जिक्र हमने किया था। दोस्तों, गालिब के समकालीन ही एक और मशहूर शायर हुए। अब आप बताएंगे कौन हुए?
1: बिल्कुल अरबी, फारसी और उर्दू के जानकार जनाब मोमिन साहब मोहब्बतों वाले शायर थे, जिन्होंने अपने जज्बात को गजल के माध्यम से व्यक्त किया। और नेहा जी, उन्हें हकीम खान भी कहा जाता था।
0: अच्छा, लेकिन हकीम खान
1: क्योंकि वो चिकित्सक भी थे और बहुत सारी और भी खसूसियात थी उनके साथ जो जुड़ी हुई थी, तो जो उनके व्यक्तित्व को और उम्दा बनाती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर गालिब साहब खुद ही फरमाते हैं कि जब वो मोमिन साहब से मिलने उनके खानदानी घर कूचा चलाव पहुंचे, तो वहाँ ऊपर के दालान में बढ़िया कालीन पर गाओ तकिया लगाकर बैठे थे। सामने ही चांदी का हुक्का रखा हुआ था और उनके पहुंचते ही, यानी गालिब साहब के पहुंचते ही, मोमिन साहब खड़े हो गए और उन्होंने उन्हें गले लगाया और नजदीक बिठा लिया।
0: और पता है, बातचीत का सिलसिला गले के मुशायरे से ही शुरू हो रहा था। और मिर्जा गालिब साहब ने ही बातचीत का जो सिलसिला था उन्होंने ही शुरू किया। और गजल तो आपने खूब कही हाकिम साहब, ऐसे ही बयानी कर रहे थे मिर्जा गालिब।
1: और मोमिन साहब ने जवाब दिया कि हाँ मिर्जा नौशा, गजल तो हम ठीक ही कहते हैं, मगर दाद ठीक से कहाँ मिल पाती है। आप खुद ही देख लीजिए, महफिल में दाद देने वाले

0: दोस्तों, इस गज़ल को सुनने के बाद ये मन कह रहा है ना, बेमिसाल गज़ल, बेमिसाल शायर मोमिन साहब, और बेमिसाल थी आज की किस्सा गोई, जो कि मंसूब थी अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब साहब के अदबी जीवन से।
1: खैर, किस्से बने ही हैं नेहा जी सुनाने के लिए, और आज जब गालिब साहब हमारे बीच नहीं हैं तो यही किस्से उनकी यादों को जिंदा किए हुए हैं।
0: बिल्कुल, हो सकता है कि वो शरीर रूप में ना हो, लेकिन देखिए जहन में कैसे हम दोनों के ही उनकी बातें, उनके मिसरे, उनके शेर, उनकी गुफ्तगू लोगों से जो की हुई है कैसे उभर आई, और हम लोगों ने वही गुफ्तगू और यादें अपने दोस्तों के साथ साझा किया
1: और बहुत मज़ा आया। दोस्तों से हम ये वादा तो ज़रूर करेंगे नेहा जी चलते चलते, कि जो किस्से कहानियों की ये सौगात हम ला रहे हैं अपने इस नए प्रोग्राम के ज़रिए, उसमें कुछ बहुत सारी किस्सा गोई अभी बहुत बाकी है। क्या कुछ कहेंगे हमारे श्रोता, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं उनके जीवन में भी बड़ी ही चीज़ें कुछ घटित होती हैं ऐसी जो किस्सा बन जाती हैं।
0: तो अगर आप भी अपना कोई किस्सा हमसे साझा करना चाहते हैं, ज़रूर करिए। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी मैसेज बॉक्स में कमेंट में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसके लिए नोट करिए हमारा व्हाट्सएप नंबर
1: 8004926250।
0: तो हमें रहेगा आप सभी की प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार और किस्सों का भी इंतजार रहेगा।
1: तो नेहा जी, हाँ, देखिए अब तो चलने का वक्त आ गया है, क्योंकि घड़ी की सुइयां भी टिक टिक करते हुए।
2: अभी आप सुन रहे थे अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब पर आधारित कार्यक्रम किस्सा गोई, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का था। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए ना तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और ना ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थ

शिकायतों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 क, भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि

निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 OTT प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NHPC की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें, अपनी बात का असर ना होते देख श्री हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा
पक्ष की ओर इंगित करते हुए

हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है। यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले चार दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है। बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च सदन में 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर गतिरोध लगातार बना हुआ है और अभी तक कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

दोस्तों, मुकेश जी की आवाज़ में एक ऐसा जादू था कि उन्होंने जो भी गाना गाया सीधे वो सुनने वाले के दिल में उतर गया। जब भी मुकेश जी की बात होती है, शोमैन राज कपूर जी का चेहरा अपने आप सामने आ जाता है। राज कपूर जी ने एक बार कहा था, मुकेश मेरी आत्मा है। जब मुकेश जी गाना गाते थे तो लगता था जैसे पर्दे पर राज कपूर खुद गा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं मुकेश की ही आवाज़ में ये गाना। फिल्म है पहचान। इस गीत में मुकेश का साथ दिया है सुमन कल्याणपुर ने। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

दोस्तों, मुकेश जी की आवाज़ की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसमें एक नटखटपन भी था तो साथ ही एक गजब का दर्द और अधूरापन भी। जब वे टूटे हुए दिल की बात गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे हर इंसान का दर्द उनकी आवाज़ में अपना सुर ढूंढ रहा हो। लीजिए सुनिए फिल्म मिलन का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एमएस सुबुलक्ष्मी के स्वर में ये भक्ति रचना मीराबाई की।

तलत अजीज के गाए इस गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र

0: महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी

0: सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवा मुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानसपतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट

0: ने इस मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue. In Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from Centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents decline sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US blames Iran for the naval blockade against Saudi Arabia in the Red Sea by Yemen's Houthi group. And in China, open badminton PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals.

0: ઊંટ આકાશવાણી ન્યૂઝ અહેમદાબાદ.
1: The Inter Meteorological Department has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Gujarat and central Maharashtra tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Himachal Pradesh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Jharkhand, Karnataka, Odisha, and Rajasthan. President Draupadi Murmu today unveiled a bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje in North Macedonia. Addressing the gathering, the president said Mahatma Gandhi's ideals of dialogue, compassion and peaceful coexistence remain highly relevant in a world facing conflict, intolerance and division. The United States has condemned Iran-backed and Yemen-based armed group Houthi rebels for threatening commercial shipping in the Red Sea after the group announced a naval blockade against Saudi Arabia. Speaking on the sidelines of a regional summit in the Philippines, U.S. Secretary of State Marco Rubio expressed hope that the situation would be de-escalated. Mr. Rubio said anything that restricts shipping through the Red Sea would be problematic for the same reasons that the Strait of Hormuz is problematic. Benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today amid the ongoing geopolitical tensions and elevated crude oil prices. The Sensex shed 715 points to close at 76,755. In China Open Badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty entered singles pre-quarterfinals at Changshuo today. Two-time Olympic medalist Sindhu advanced to the second round of women's singles after defeating compatriot Unnati Huda in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated world number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police and pleas alleging use of excessive force on protesters. And in China Open Badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं असगर अली. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत नजरिए को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया है जिसमें नौजवान एक कलीदी रोल अदा करें. हुकूमत ने ये बात दोहराई है कि वो पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर बामाना बहस के लिए तैयार है. इसने नौजवानों के एहतजाज को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों की नुक्ताचीनी की. अपोजिशन ने दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखनांदाजी की. इसने बहस से पहले तालीम के महकमे के वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया. दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहरीन पर मुबैना तौर पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर मरकज और पुलिस से जवाब तलब किए हैं. रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बेहतर रेल सेफ्टी, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेन हादसात में खातिरख्वाह कमी आई है. अमरीका ने ईरान पर यमन के हूसी ग्रुप की जानिब से बहर अहमर में सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का इल्ज़ाम लगाया है. और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं. अब खबरें तफसील से. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत की तामीर का ख्वाब जन आंदोलन बनना चाहिए और मुल्क के नौजवानों को इस नज़रिए को बुनियाद फराहम करनी चाहिए. वजीर आजम ने नई दिल्ली में विकसित भारत अहदाफ के लिए मुतल्लिका शोबों और देही तरक्की, ज़राअत और समाजी बहबूद की पेशरफ्त के जायजे के सिलसिले में सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतह मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही. इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों के सेक्रेटरी साहिबान के साथ साथ वजीर आजम के दफ्तर के सीनियर अहदेदारान ने शिरकत की. मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि अवाम की ज़रूरत के तहत तैयार करदा असलाहत के नफाज में तेज़ी आनी चाहिए और इनसे

0: वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है। ऑपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा। आज लोकसभा की कार्रवाई 3 मरतबा और राज्यसभा की कार्रवाई 4 मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों फरीकों की बात सुनी और कहा कि हुकूमत एक खुले जहन के साथ बहस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो कार्रवाई में रखनांदाजी के बजाय एक तफसीली बहस में हिस्सा ले। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे अगर हुकूमत इस बात की यकीन दहानी कराए कि नीट पेपर लीक मामले पर जवाबदेही तय करने के सिलसिले में मुजाहरा कर रहे नौजवानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को एक खत में जनाब वांगचुक ने कल रात अस्पताल आने के लिए दोनों वजरा का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हुकूमत के इकदाम की बदौलत संगीन नौयत के रेल हादसात की तादाद साल 2014-15 के 135 से घटकर इस साल 2026-27 के जून तक सिर्फ 2 रह गई है। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और बेहतर रखरखाव के जरिए रेल सेफ्टी को मुस्तहकम किया गया। जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि सेफ्टी से मुतालिक सरगर्मियों पर अखराजात साल 2013-14 के तकरीबन 39,000 करोड़ रुपये से बढ़कर साल 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपये से तजावज कर गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर पीर के रोज पार्लियामेंट की जानिब मार्च कर रहे मुजाहरीन पर किए गए मुबैना ताकत के इस्तेमाल पर मरकज और दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया ने हुकाम को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी समेत पुलिस कार्रवाई से मुतालिक तमाम सबूत को महफूज रखने की हिदायत दी है। मुफादनामा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए बेंच ने हुकाम को जवाब सौंपने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब मुसाफिर खिदमात के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने हिफाजती वजूहात की बिना पर 17 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया था। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल थे। सिक्किम के नामची जिले में समरदंग में जेर तामीर सुरंग में बचाव टीमों ने मजीद 8 लाशों का पता लगाया है। ताहम सुरंग के अंदर इंतहाई खतरनाक सूरत हाल के सबब इन लाशों को निकाला नहीं जा सका। अहलकारों ने कहा है कि कम दूरी तक दिखाई देने और मीथेन गैस के रिसाव ने बचाव कार्रवाई को ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अब तक 13 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि सुरंग के अंदर कुछ अफराद फंसे हुए हैं। सिक्किम हुकूमत और कौमी पनबिजली पावर कॉरपोरेशन के सीनियर ओहदेदारान मकाम पर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: NHPC टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियां आज लगातार तीसरे दिन भी कोशिशों में लगी रहीं। बचाव कार्रवाई 24 घंटे जारी है, ताहम कम बसारत और मीथेन गैस के रिसाव ने लाशों को निकालने में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 8 लाशें टनल के दहाने से 2 किलोमीटर दूर हैं। इस दौरान सिक्किम हुकूमत ने हादसे में फौत होने वालों की लाशें आज उनके कुंबों को सौंपी। मरकज के अलावा सिक्किम हुकूमत और NHPC ने मुतासरा कुंबों के लिए माली मदद का ऐलान किया है। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक मीटिंग हुई, जिसमें मंदिर के इंतजाम, अतियात के निज़ाम, तकर्रियों और इंतजामी असलाहत जैसे मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तकर्री खाली अहदों को पुर करने और इसकी मजहबी कमेटी की नई सिरे से तश्कील पर तबादला ख्याल किया। ट्रस्ट ने कहा कि खसूसी तहकीकती टीम की हतमी रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई है और मीटिंग के दौरान इस मामले पर बातचीत नहीं हुई। हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान नाजेबा मवाद नशर करने की बिना पर 50 OTT प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है। लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में इतलात और नशियात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुर्गन ने बताया कि हुकूमत शिकायतों की बुनियाद पर इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदगी से कार्रवाई करती है।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटा सा गाँव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहां कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं।

0: जो योजना है इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
1: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है जो बेसिकली गांव पर आधारित है या टीयर 2 सिटीज पर आधारित है या टीयर 3 सिटीज पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाए, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा अपना नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे एक तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ ही नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब एक चौथाई तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो इस समय देश भर में, और लोग लोकली, वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा? क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
2: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अभी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में, और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा, जो बड़े ब्रांड, बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे, छोटे शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है, और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा, उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ लाख रुपए

0: से अपना काम शुरू करना चाहते हैं वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करें। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है, जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पे जो लोग एक तरीके से अपने उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरह की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरह की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है और उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेंड करने तक मार्केटिंग के स्तर, वो इस स्कीम की खास जो खूबी है और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन इसमें हुए हैं तो ये अपने आप में, या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है
1: जी
0: और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों की थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है। तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है तो वो इकोसिस्टम जो है इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं और बड़े हुए हैं लोग
1: जी
0: इस तरीके के। उदाहरण जैसे 2 उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया जिन इस तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके के तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोइट करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनकी जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में, जिस तरह से लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं
1: जी
0: और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें हमारी जो GDP का करीब 7%, 7% ये सेक्टर बन गया है और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
1: हरवीर जी जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि PMFME योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार, और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है।

0: जमनालाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
1: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2-3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में, जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है, और हम जो है, मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा हरविंद सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। और इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह हैं, जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए, लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि, और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, फल और उसके जो प्रोसेस्ड हैं पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए, आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेज़न पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं, और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं वो, आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहां मिलेट्स होते हैं, तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है, लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है।
0: हरवीर जी, 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा है जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ

0: सोच के काम करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए, वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाएं। क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं, और आप कम्पीट कर सकते हैं क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वही कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेकर मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले। तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है, और इसको क्योंकि बात ही इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना है हमें, उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये भी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं, अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में, और बहुत सारी है, जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे एक कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हैं वो लोगों के बीच में पहचान बनाए, और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही है। आपको क्या लगता है, जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
2: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती, हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती, फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, अपनाएं, तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा चमत्कार ना कर सकती, 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सेंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मान कर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही है। उनके उस ज्ञान को, जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेष

0: जाता है तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसते हैं आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मानता, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में, तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पे फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है, तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था अपने को सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मेरा जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही है, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव-गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग, ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पर, अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है, तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसने आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEMA के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है, और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे। तो यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 के लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप 4 गुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है, और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क और जो ये बड़ी होती PM किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन्स बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बन रहे हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस है, उनको गाँव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सकें उसको, जब आप इस PM FME से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बना देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
2: बिल्कुल, देखिए, एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात यह है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़ी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे जो बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासना जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया, उनको

0: एक मेंबर बनाकर के किया गया काम। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
1: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं, जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। कितना मधुर और भावपूर्ण गीत था दोस्तों। प्रेम में प्रतीक्षा का अपना ही आनंद होता है और इस गीत ने उसी एहसास को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। इसके बोल, मधुर संगीत और दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति हर श्रोता के मन में

देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। कितना मधुर और भावपूर्ण गीत था दोस्तों। प्रेम में प्रतीक्षा का अपना ही आनंद होता है और इस गीत ने उसी एहसास को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। इसके बोल, मधुर संगीत और दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति हर श्रोता के मन में एक अलग ही भाव जगा देती है। यही तो फिल्मी संगीत की सबसे बड़ी विशेषता है, वो हमारे जीवन के हर एहसास को सुरों में पिरो देता है। श्रोताओं, संगीत की यही खूबसूरती हमें कभी मुस्कुराने पर मजबूर करती है तो कभी पुरानी यादों की गलियों में ले जाती है। हर गीत अपने साथ एक नई कहानी, एक नया एहसास और एक नई ताजगी लेकर आता है। आइए अपने सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी है एक ऐसे मधुर और लोकप्रिय फिल्मी गीत की जो अपने दिलकश बोलों और कर्णप्रिय संगीत के कारण वर्षों से श्रोताओं की पसंद बना हुआ है। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म डेंजरस इश्क से, आवाजें राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार की, शब्द रचना शब्बीर अहमद की और धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

दोस्तों, फिल्मी संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी थीं जो समय की सीमाओं से परे जाकर हमेशा के लिए अमर हो गई, और वो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे बीच में नहीं है, जैसे लगता है कि हमारे आसपास ही हैं वो आवाज़ें। ऐसी ही एक जादुई, सादगी भरी और दिल की गहराइयों तक उतर जाने वाली आवाज़ है महान पार्श्व गायक मुकेश जी की। उनकी गायकी में ना कोई बनावट, ना कोई दिखावा, बल्कि सच्चे एहसासों की एक ऐसी मिठास थी जो सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुँच जाती थी। मुकेश जी ने प्रेम, विरह, जीवन दर्शन और मानवीय भावनाओं को अपनी आवाज़ में इस तरह पिरोया कि उनके गीत आज भी उतने ही तरोताज़ा और लोकप्रिय लगते हैं जितने अपने दौर में थे। यही कारण है कि उनकी मधुर आवाज़ पीढ़ियों से संगीत प्रेमियों की पसंद बनी हुई है। दोस्तों, जब किसी गीत में मधुर धुन, अर्थपूर्ण बोल और मुकेश जी जैसी भावपूर्ण आवाज़ का संगम हो जाए तो वो गीत केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि यादों का एक खूबसूरत कारवां बन जाता है। ऐसा ही एक सदाबहार गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस गीत में प्रेम की चंचलता भी है, सौंदर्य भी,

और प्रशंसा भी, और मुस्कराहटों से भरा एक मनमोहक अंदाज भी। तो लीजिए सुनिए मुकेश के स्वर में फिल्म पत्थर के सनम का गीत। रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों, हर खूबसूरत सफ़र की तरह आज का हमारा ये फिल्मी संगीत का कार्यक्रम भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच ही गया। आशा है बीते इन कुछ पलों में प्रस्तुत गीतों ने आपके मन को आनंद, सुकून और मधुर यादों से भर दिया होगा। कार्यक्रम का समापन हम एक ऐसे कालजयी गीत के साथ करने जा रहे हैं जो हमें जीवन की सादगी, समय की नश्वरता और इंसान के कर्मों की अमरता का संदेश देता है। साहिर लुधियानवी के गहरे और अर्थपूर्ण शब्दों को मुकेश जी ने अपनी ओजपूर्ण और भावपूर्ण आवाज में अमर बना दिया। ये गीत हमें याद दिलाता है कि व्यक्ति भले ही कुछ समय के लिए ही संसार में आए, लेकिन उसके विचार, उसके कर्म और उसकी रचनाएं हमेशा जीवित रहती हैं। इन्हीं भावपूर्ण विचारों के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया। आपका ये स्नेह और साथ में आगे भी ऐसे ही अच्छे गीत लेकर आने की प्रेरणा देता रहेगा। मुझे इस कार्यक्रम को

आवाज में। साथी कलाकार थे ढोलक पर पुनीत और हारमोनियम पर संगत दे रहे थे दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जो कि है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंजन। आज हम सुनेंगे शहनाई वादन। सत्येंद्र नाथ जी कलाकार हैं और राग है चंद्रप्रभा। धुन निबद्ध है राग मिश्र किरवानी में। संगत कलाकारों में तबले पर हैं राशिद नियाजी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए प्रियांक कृष्ण का सैक्सोफोन पर बजाया राग प्रसव। विलंबित लय एक ताल में निबद्ध है और मध्य लय 3 ताल में। आपके साथ तबले पर संगत की है गिरधर गोपाल मिश्र ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रियांक कृष्ण का सैक्सोफोन पर बजाया राग प्रसव, आपके साथ तबले पर संगत की गिरधर गोपाल मिश्र ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक

0: तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged that some individuals are attempting to use the students and youth as political tool to serve their own political interests.
2: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interest. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed.